गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

अब किसी ने कहा है कि यार अपनों के साथ ही तो लड़ाइयाँ होती है। वैसे बात तो सही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और नोटिस किया है कभी कि अक्सर उन्हीं लोगों से हम ज्यादा लड़ते हैं ना जो एक्चुअली हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, अपने होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हर आर्ग्यूमेंट में हमें एक विनर चाहिए होता है। नहीं, मेरी बात सही है। अरे भाई, रिलेशनशिप है, डिबेट कॉम्पिटिशन थोड़ी है ना। मैं एक बहुत अच्छी लाइन ना मैंने पढ़ी जो कहती है कि अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज नेवर मी अगेंस्ट यू, है ना, इट्स ऑलवेज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ ना हस्बैंड वाइफ या कपल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड, किसी के साथ भी हो सकती है। और कभी कभी सामने वाले को हराने से ज्यादा जरूरी होता है उसको समझना। अटैक करने के बजाय बात करो, अज्यूम करने के बजाय पूछ लो, और हर डिसएग्रीमेंट पे डिस्टेंस क्रिएट करने के बजाय थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश कर लो। बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है बाबू मशाए, कभी कभी इंसान को जीतना भी ज्यादा जरूरी होता है। बस इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, सिंपली आफरीन है, माइक से दिल तक बातें लेकर आती है ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: Milci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी। अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, बात कुछ और है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची। और होता है अक्सर कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको महसूस तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तकरीबन 45 के ऊपर या तकरीबन 50 तक, लेकिन आपकी जो गाड़ी वहां पर तो 42-43 यही दिखा रहा है। ये कोई धोखा नहीं दे रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि अल मरजाम, ये सुना है आपने? हाँ, ये जो सीजन है ये शुरू हो चुका है जहां पर ह्यूमिडिटी इन कतर इज एट इट्स पीक। तो बस ये कुछ सिलसिला ना एक महीने तक चलता रहेगा जहां पर बहुत पसीने आने वाले हैं आपके, भले ही वेदर जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा होगा। जैसे आज का ही टेम्परेचर देख लो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट, देखो वेदर आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 43 पर रहेगा और मिनिमम जो है 34 पर रहेगा, लेकिन जो महसूस कर रहे हो आप तकरीबन 48 के करीब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस अल मरजम, उस वजह से ही ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हवा में और आपके पसीने छूट रहे हो और आपको गर्मी हो रही है। लेकिन कोई ना, वो कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है और हर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर सब कुछ आता है, जिसकी वजह से आपको अब ठंडी के मौसम भी जल्दी जल्द जल्दी जल्द मिलने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल मजे के गाने आपके लिए लाइन अप है राइट ईयर, जो आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास दे। ऑन विच इट्स हॉट।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम
3: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा है मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो ना मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स पावर दैट सेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखा दूं।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के एग्जैक्टली 7:44 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. वेल दैट वॉज गुप्त मूवी का गाना, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक एल्बम आई वुड से 90s की. हालांकि अभी जाकर पता चला कि उसमें से काफ़ी सारे गाने ना म्यूजिक जो थी धुन थी वो चुराई हुई थी. एंड इट्स डिडंट रियली मैटर यार, मतलब ठीक है कोई और कंट्री की धुन है लेकिन हमें तो मज़ा आया कि नहीं. वेल फिलहाल तो कोई और चीज़ में मज़ा लेने का वक्त आ गया है एंड दैट इज़ माई गेम, माई फेवरेट वाला गेम जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. और आज का जो सीन है ना, आई थिंक सो इट्स फेयरली ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है, तो आप जो है अपने रजिस्टर्स के वॉल्यूम बढ़ाइए और ये सीन सुन लीजिए.
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
3: चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर.
1: ऑल राइट, ईजी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्या? 5000 1896 वैसे मेरा नंबर है और अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर से एक बार सुना देती हूँ. चलिए.
3: चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर.
1: ऑल राइट, कौन सी मूवी है ये फटाफट से बताइए. आई थिंक सो ये एक्ट्रेस की आवाज पहचानना बहुत ही आसान है बिकॉज इट्स यूनिक, है ना. तब तक के लिए चलिए अगला गाना, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स अगेन, हम राज मूवी का ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: Ochana tikuri, ochana tikuri.
1: Well, Hardy Sandhu ki awaaz mein ye gana Right Here on Mirchi jud gayi hai aapke saath.
2: Afreen, afreen, simply afreen. Afreen, afreen, simply afreen.
1: Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है Right Here on Mirchi Mornings. और यहाँ पर आज मैंने ऐसा एक सवाल पूछा था जो मुझे तो लगा कि काफ़ी ईजी है, लेकिन शायद कुछ को लगा कि नहीं यार, आफरीन आवाज़ तो हमने पहचान ली है लेकिन मूवी कौन सी है ये याद नहीं आ रही है. नो वरीज, अब मैं फिर से डायलॉग सुना रही हूँ. अगर अब हमें अभी अभी जुड़े हैं, अभी हमसे जुड़े हो तो बता दूँ कि यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट चल रहा है. सीन सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है आखिर ये कौन सी मूवी का सीन है. 5000 1896 इज द नंबर. सो तैयार हो जाइए फॉर आर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
3: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
4: चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर.
1: All right, but this is some Sherni out there जो ये जबरदस्त डायलॉग बोल रही है और ये डायलॉग पूरा लिखकर हमें एग्जैक्टली ईयर बताते हुए और सारी डिटेल्स देते हुए कुमार ने बताया है कि आफरीन दिस इज मर्दानी 2014 की ये मूवी है. यहाँ पर रानी मुखर्जी वॉज अ पुलिस ऑफिसर, शिवानी शिवाजी रॉय, इतनी डिटेल में इन्होंने बताया है. उसके अलावा यहाँ पर किसने बताया, ये सद्दाम हुसैन ने भी बताया है. देन चार्ली ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. मोहसिन का सही जवाब है अरफात एंड मोहम्मद यूसुफ खान. और ऐसे ही बिल्कुल कहते हैं ना मेरे साथ में जो इस वक्त पर जुड़ते हैं वो बिल्कुल बॉलीवुड बफ होते हैं यार. अब कल कुछ लेकर आती हूँ, एकदम तगड़ा वाला लेकर आती हूँ. वीकेंड है ना, वैसे भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है काम पर, यहाँ पे लगा लेना ठीक है. Meanwhile, playing my favorite track for you guys on Mirchi Hot.

0: driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
1: Visit Suzuki Qatar showroom by Tehsil Motors, Airport Road, Doha.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: Yes, of course, Mirchi Helpline. बोलिए।
2: मेरा बॉस AI पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे AI से रिप्लेस कर देगा। क्या करूँ?
3: अरे तो सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे? AI को।
4: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

अजय अतुल की म्यूजिक और ये गाना फ्रॉम द मूवी धड़क, बट आई फॉन्डली रिमेम्बर कि ये गाना एक्चुअली ऑब्वियसली सैराट मूवी का था, जो मराठी की मराठी पेशकश थी। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कहीं कम ही होता है मेरे ख्याल से कि कोई मराठी मूवी का रीमेक किया गया हो। वेल, साउथ की मूवीज का बहुत सारे रीमेक्स आ जाते हैं, लेकिन मराठी सैराट मूवी की ये रीमेक जो आई थी धड़क, जहाँ पर जानवी कपूर थी और जानवी कपूर के साथ में कौन था, शाहिद कपूर का भाई था लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वेल मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइटर अनमिर्ची। अगर आपने ना मराठी वाला वर्जन नहीं देखा ना इस मूवी का सैराट, यू शुड एक्चुअली गो एंड वॉच इट। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, यू विल एक्चुअली इंजॉय द एक्टिंग, है ना। मैं हूँ आफरीन और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लग्जरी कार के शौकीन अगर आप हो या आप के जानने वाला कोई है, तो फिर आज की वो तारीख है, यानी 19th of August, लग्जरी कार्स एंड मोटर बाइक्स आर टू बी ऑक्शनड ऑन कोट मजदात ऐप। लेट मी स्पेल आउट द ऐप फॉर यू, इट्स कोट एंड MZADAT। वेल, कतर्स पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैज अनाउंस के ये ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ लग्जरी कार्स एंड मोटर बाइक्स होने वाली है आज, वो भी 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांडेड कार्स अवेलेबल है, जैसे कैडिलैक, मर्सिडीज बेंज, BMW एंड सो मैनी मोर। सो अगर कोई है जो लग्जरी कार्स में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड येस प्रोबेबली दिस कुड बी अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू बाय वन। तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, चलिए सोनू निगम की आवाज में। वेल, आई वांट टू गेट लॉस्ट इन द सॉन्ग, इसका म्यूजिक वीडियो, इसके गाने की आवाज, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल अबाउट दिस सॉन्ग, है ना, ब्रिंग्स बैक सो मेनी गुड मेमोरीज। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
2: है
4: यार, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लगा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे
5: भाई मालूम था ये। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
6: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

वेल, श्रुति रानी की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्च जुड़ गई है आपके साथ। वेल, इट्स टाइम के थोड़े से इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए जाएं, यानी एक्सचेंज रेट पर ध्यान देते हैं। आज का एक्सचेंज रेट कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.20, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस आपको मिल रहे हैं 76.15। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.62। श्रीलंकन रुपीज ऑन द अदर साइड इज एट 91.09 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.93। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 & only 89.6।

0: आई कुड से फॉर द वेदर हमारे कतर में कि यार गजब का है दिन, लेकिन कोई ना भाई, हमारा मूड बड़ा गजब का है, इसलिए दिन भी ना बहुत ही खूबसूरत और गजब का होने वाला है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। खोलने का टाइम आ गया है और आज कुछ तो एकदम नया लेकर आई हूँ मैं, क्या है वो मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, मिर्ची के मिस्ट्री बॉक्स में से एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस मूवी, बट मैं नहीं बताऊंगी, बताएगा कोई और। लेकिन ये जो आवाज है इसको कोई भी क्या कहते हैं एक्टर एक्ट्रेस के साथ आप जोड़िएगा नहीं, बस ये आपको कोई तो एक कहानी बता रहा है, एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। आपने गेस करना है कि ये कौन सी मूवी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? मुझे वो कैरेक्टर का नाम चाहिए, एक्टर का नाम चाहिए और इवेंचुअली आप मूवी तो बता ही दोगे, ठीक है? सो यर इट गोज, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो इस मिस्ट्री को।
1: मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली मैन हूं। मूवीज देखना मेरी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना इंपॉर्टेंट कि एक दिन वही मूवीज का नॉलेज मेरी फैमिली के काम आ जाता है। एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद मुझे डेट्स, प्लेसेस, रिसीप्ट्स और मेमोरीज सब कुछ एक नई कहानी में फिट करना।
0: Well, कौन है ये कैरेक्टर बताइए मुझे। चलिए 5000 1896 इज माई नंबर एंड काफ़ी कुछ बता दिया है इस कैरेक्टर ने अपने बारे में, ठीक है? वैसे इतना बड़ा मैं ये बात बता दूं कि ये आवाज़ उस कैरेक्टर की नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट गिविंग यू द हिंट्स कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। 5000 1896 इज माई नंबर एंड टेल मी विच कैरेक्टर इज दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट। तब तक के लिए अगला गाना श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज में। हाय झल्ला बल्ला, कितनी क्यूट लगती है ना ये सब परिणीति। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bordar.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के आंखों में खुद ही खो जाती सिवाय सिवाय किस
5: जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे TNC अप्लाई
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: मॉर्निंग की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। चलिए यहाँ पर हम गेम खेल रहे थे और वो गेम ऐसा था कि कुछ नया था और उस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए कि भाई पहचानना क्या है। चलिए मैं फिर से मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकला था आज? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन निकला था जो कैरेक्टर एक मूवी में है और आपने गेस करना है कि ये कौन सा कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मूवीज में कितने सारे होते हैं, राज है हमारा DDLJ, रैंचो है, तो मैं ना वो कैरेक्टर का नाम जानना चाहती थी। और इसमें जो आवाज़ में सुना रही हूँ वो आवाज़ का कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये आवाज़ तो बस आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सो हियर इट गोस।
1: मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली मैन हूँ। मूवीज देखना मेरी लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतना इम्पोर्टेंट कि एक दिन वही मूवीज का नॉलेज मेरी फैमिली के काम आ जाता है। एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद मुझे डेट्स, प्लेसेस, रिसीप्ट्स और मेमोरीज सब कुछ एक नई कहानी में फिट करना पड़ता है।
0: ऑलराइट, Wasn't this interesting? अब आप ही तो कहते थे कि कुछ अच्छा खासा टफ लेकर आए, तो लेकर आ गई मैं आपके लिए ये टफ वाला। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी पहचान लिया है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। प्रिंसन का मैसेज है, प्रतीक पांचल का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, जिन्होंने पूरा एग्जैक्टली बताया है कि ये दृश्य मूवी अजय देवगन है और मूवी में अजय देवगन का कैरेक्टर का नाम है विजय सलगांवकर, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। बस इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ मजेदार स्पाइसी सा गेम कल भी लेकर आऊंगी। राइट रन विद शी, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक इट्स हॉट।

0: school.
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
3: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
4: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
3: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं क्या करूँ
4: अरे तो सिंपल है ना लोन भर दे फिर फोन ही नहीं आएगा

0: वेल संजू राठौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:03 की तरफ। फर्क लगाना आवारापन नहीं, ये तो बल्लाद मूवी का है लेकिन गाना तो आवारापन वाला है।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

ये गाना राइट रणवीर जी जुड़ गई है आपके साथ आपके यस सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ तर पर देख लीजिए भाई, कतर में हमारे इवेंट्स की अभी जो है सिलसिला जस्ट शुरू ही हुआ है और शुरू मतलब आगे जो है बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूड रहने वाला है। फिलहाल तो हर जगह आप देखोगे तो बैक टू स्कूल बैक टू स्कूल बैक टू स्कूल के मज़ेदार चीज़ें चल रही है। एंड ऐसे में ऑफकोर्स यू नो मिर्ची, अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं मिर्ची को और आप जानते हो मिर्ची बच्चों के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ इवेंट लेकर ही आता है। सो मिर्ची का भी बैक टू स्कूल इवेंट आने वाला है जिसके सारे डिटेल्स आपको अगर जाननी है तो थोड़ा सा इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ना मिर्ची वन कतर जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यू हैव टू बी ऑलवेज बी कनेक्टेड टू दैट पेज, क्योंकि यहाँ पर सारे इवेंट्स जैसे ही हम डाल देते हैं और जैसे ही हम कोई रजिस्ट्रेशन खोलते हैं धड़ाधड़ 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे के रजिस्ट्रेशन फिल हो जाते हैं। तो इसलिए पहले से ही बता रही हूँ, अगर नहीं फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पर जाइए मिर्ची वन कतर को फॉलो कीजिए, आपका ही फायदा है। अब वहां पर अभी जाकर देखोगे ना तो क्या दिखेगा पता है आपको, पहले ऊपर तो सबसे पहले दिखेगी आपको सुहानी शाह। यस सुहानी शाह वही जादूगरनी, वेल हम बचपन में मैजिशियन वगैरह कहते हैं, अभी थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है, अभी वो वाला मैजिक नहीं जहां पर ऐसे टोपी में से कबूतर निकाल लिया या फिर ऐसे कुछ तो फ्लावर कहीं से निकाल लिया, ना ना ना ना, ये वाला मैजिक हमने बहुत देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू समथिंग फॉर समथिंग स्पेक्टेक्युलर जो आपके दिमाग में लिटरली घुस जाए और आपके दिमाग में से वो सारी बातें छीन के आपके सामने रख ले। सो वेल दैट इज कॉल्ड मेंटलिस्ट और इंडिया के नामचीन मेंटलिस्ट में से सुहानी शाह मानी जाती है। सो वेल आपने क्या करना है, अगर आपको ये लाइव विटनेस करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है ना वीडियोज पर और लोगों पर कि नहीं नहीं नहीं यही कहीं तो स्टेज्ड होगा, नहीं नहीं नहीं स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड है ऐसा दिमाग में है, चैलेंज है, चलो आओ खुद देख लो 25th of September QNCC में, जहां पर सुहानी शाह आपके सामने लाइव सब कुछ मैजिक करके बताएगी और आपके दिमाग के अंदर लिटरली घुस के उसे पढ़ लेगी, ठीक है ना। सो वेल टिकट्स बुक कर सकते हो आप क्यू टिकट्स या एस सिटी यानी स्नोनो सिटी पर। तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़े। ऑलराइट अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी की आवाज में ये गाना मुझे ऑलरेडी पता नहीं क्यों वीकेंड वाली फीलिंग दे रहा है। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची थॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Milci, Burga!
2: Milci?
3: It's Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

एक फुटबॉल स्टेडियम में बास्केटबॉल साउंड्स वियर्ड ना, लेकिन कतर है ना बॉस, कुछ भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। 27 अगस्त को कतर की नेशनल बास्केटबॉल टीम फेस करने वाली है चाइना और वेन्यू है अल जनूब अरेना। वेल बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैच, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन मेरे लिए ना मैच से भी ज्यादा फैसिनेटिंग मुझे लग रहा है इसका वेन्यू। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में इसी अल जनूब ने 7 फुटबॉल मैचेस होस्ट किए थे। अब इसी 44,000 प्लस कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म करके अराउंड 8,200 सीट एनक्लोज्ड बास्केटबॉल अरेना बना दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू फीबा, दिस विल मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टेडियम टू होस्ट अ गेम इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आई मीन कतर है बॉस, सब कुछ पॉसिबल है, मुझे लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। एंड वेल, दिस इज नॉट जस्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू, इट्स री इन्वेंटिंग वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। दैट्स स्मार्ट स्पोर्टिंग लेगेसी आई वुड से, है ना, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम सिर्फ पोस्ट कार्ड नहीं बनकर रहना है ना, कि मतलब हाँ ये एक स्टेडियम है, यहाँ पर हुआ था एक जमाने में वर्ल्ड कप। नहीं, इसे एक कम्प्लीटली न्यू स्पोर्टिंग लाइफ मिल रही है एंड दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी इसी तो कहते हैं। वेल 27 अगस्त की डेट भी ना बहुत ही मजेदार है, क्योंकि एग्जैक्टली अब से एक साल बाद यानी 27 अगस्त 2027, यस, तब से शुरू होने वाला है हमारा फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, जहां पर 32 टीम्स होने वाली है, 92 गेम्स होने वाले हैं और ये सब कुछ हमारे एक ही शहर यानी दोहा में होने वाला है, हमारे एक ही कंट्री यहां पर राइट हियर इस देश में कतर में होने वाला है। सो फिलहाल के लिए तो 27 अगस्त की मैच है, 7 बजे कतर वर्सेस चाइना अल जनूब अरेना। सो फुटबॉल का घर, बास्केटबॉल का कोर्ट, समथिंग यूनिक एज ऑलवेज, कतर इज हियर। मैं हूं आफरीन, माइक से दिल तक, राइट अराउंड विद शी, इट्स हॉट।

घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई। जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Zee5। डाउनलोड द ऐप नाउ।

अब देखो तो हम बाहर से, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।

0: प्यारा सा गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, राइट रन मिर्ची आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कभी कभी ना कोई इंसान आपको अच्छा लग जाता है ना, तो फिर वो कितना परफेक्ट है, दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, ये कैलकुलेशंस ना धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाती है। और इसी ख्याल पर आज आफरीन की डायरी से आज की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मोहब्बत हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, क्योंकि पसंद हो चीज तो कीमत नहीं देखी जाती। बस दिल का भी अजीब हिसाब है बाबू मोशाय, जहाँ सच में किसी की कदर हो जाए ना, वहाँ वैल्यू देखी जाती है, फिर कीमत नहीं। That's right, है ना? अदनान सामी की आवाज में सलामेश से ये खूबसूरत सा गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची छठ।

दोस्तों कभी नोटिस किया है कि आपके घर में आपका सबसे बेस्ट फोटोग्राफ कौन सा है? वो नहीं जो आपके फोन में है या डिजिटल कैमरा में होता है, वो जो आपके पास बतौर हार्ड कॉपी होता है ना? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और फोटोग्राफ के बारे में आज क्यों बात कर रही हैं आफरीन? बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. और याद है कि वो हमारे पास जो हार्ड कॉपी की फोटोज होते थे उसमें किसी की आंख बंद है तो कहीं कोई स्माइल ऑकवर्ड है, फोटो की क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब है, फिर भी उन्हें देख कर ना एक पूरा सा वक्त ही जो है ना वो वापस आ जाता था. और आज ना वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, मुझे वो जमाना याद आ रहा है जब फोटो खिंचवाना एक एक्चुअली इवेंट हुआ करता था. फेस्टिवल हो या बर्थडे हो या कभी रैंडमली मम्मी पापा कहते चलो आज ना स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाते हैं, फिर सब रेडी होते थे, बेस्ट कपड़े अपने पहनकर बाल वगैरह सेट करके स्टूडियो पहुंचते थे. और वो हर स्टूडियो ना मेरे ख्याल से वो एक कॉमन सा स्टूडियो रहता, पीछे बैकग्राउंड में वो पर्दे होते कर्टन्स या फिर कोई एक अच्छा सीनरी का वॉलपेपर. इट वाज एक्चुअली फिक्स इन ईच एंड एवरी स्टूडियो आई फील, है ना. एंड तब ना रीटेक्स की बारिश बिल्कुल भी नहीं थी एंड देयर वर नो फिल्टर्स एट ऑल. मतलब 50 फोटो निकाल कर एक सिलेक्ट करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक दो पिक्चर्स क्लिक होती थी और वही हम सालों तक ना एल्बम में अभी भी संभाल कर रखते हैं. और जब भी हम आई एम श्योर जब भी आप अपने होम टाउन जाते हो तो वो लेकर बैठते हो ना या फिर इधर लेकर आए हो, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. एंड शायद इसीलिए ना फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा चलाना नहीं, इट्स एन आर्ट ऑफ नोटिसिंग. एक अच्छा फोटोग्राफर वो मोमेंट देख लेता है जो बाकी सब लोग जीत रहे होते लेकिन नोटिस नहीं कर रहे होते हैं. तो बस आज जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी के हर खूबसूरत मोमेंट को कैमरा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ मोमेंट्स को तस्वीर बना लेना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है तस्वीर रह जाती है. और कभी कभी वही एक तस्वीर पूरा वक्त जो है हमारा वापस ले आती है. हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक, राइट इन ऑन मिर्ची. मिलूंगी आपको कल डबल एनर्जी के साथ ऑन आ वीकेंड. हाँ थर्सडे है, मैं वीकेंड ही मानती हूँ, ठीक है ना. टाटा बाय बाय, सायनारा, अपना ख्याल रखिएगा. हेलो नहीं, गुड बाय. सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।

0: Well, Sur Nigam ki power pack awaz Hima Sardesai ka saath, and what a lovely power pack track it is indeed from the film Pardes Bhai. Is gaane mein na bahut sare emotions jude hue hain, and jitne bhi 90s ke log hain ye baat aap aur hum bahut achhi tarah se jante hain ki kis khoobsurti ke saath hum jo hai na is gaane se 101% relate kar sakte hain. Kya kehti public? Waise relation ki baat karu to yahan pe koi aur bhi factor hai.
1: Mirchi Anshu
0: Hola, hala. Welcome back. You're listening to VT Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek baar phir se aa chuki hu. And agar relation ki baat kare, connect karne ki baat kare, to aap aur hum bahut achhi tarah se jante hain ki aap aur hum bhi ek dusre se kitni khoobsurat tarah se relate kar pate hain. यार अगर मैं अपनी ज़िंदगी के एक अभिन्न अंग की बात करूँ या हिस्से की बात करूँ या रूटीन की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं आप सब नोइंगली अननोइंगली मेरी इस लाइफ का पार्ट ज़रूर बन गए. यार हम ना रेडियो में अक्सर आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. रेडियो के ज़रिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी खबर जो हम आप तक पहुंचाते हैं. लेकिन कभी कभी ये बात महसूस ही नहीं हुई कि कैसे चलते चलते आपसे बातें करते करते ना जाने कितनी दिल की बातें जो हम शायद किसी से कह नहीं पाते, जो हम शायद किसी के सामने बयान नहीं कर पाते, आपके सामने है ना बस निकल ही जाती है. तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो रिश्ता है ना ये बहुत खास बहुत स्पेशल है. एक ऐसा रिश्ता जिसमें शायद मैंने आपको कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो मेरा अपना है जो रेडियो के स्टूडियो के उस पार बैठ कर मेरी बातों को सुन रहा है एंड मेरी बातें जो हैं कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट कर रही हैं. तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में रिश्ते हों तो बहुत खास हों, एंड कुछ रिश्ते तो ऐसे ज़रूर हों जो आपको कभी परखे ना, जो आपको कभी जज ना करें, एंड आप दिल खोल के उनके सामने अपने दिल की बात जो है ना वो रख सके. और सच कहूँ अगर ऐसा कोई शख्स है आपकी लाइफ में तो भैया ज़िंदगी जो है ना मुकम्मल है, और ये बात तो तय, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कोई मिल पाना बहुत मुश्किल है. तो चलिए जी, अगर आप मुझसे वही बॉन्ड शेयर करते हैं जो मैं आपसे करती हूँ, या आपका और हमारा रिश्ता बहुत खास है, इंडीड एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो बनता है. वेलकम वाला 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज शाशा तिरुपति का साथ, यानी अगला खूबसूरत सा गाना. एंजॉय. पिंदी का नाम अंशु.
2: एक हो

0: मैडम गुड इवनिंग।
1: हाय।
0: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
1: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
0: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
0: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
0: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
2: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
0: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
2: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
2: से सॉरी,
1: सॉरी ना मैं, सॉरी।
2: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कुकड़ू गो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: वेल गुरु रंधावा की पावर पैक आवाज गुरु योयो हनी सिंह एंड नेहा कक्कड़ का साथ, फिल्म का नाम खेल खेल में। एंड ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं कि भाई बातें करते करते खेल खेल में वक्त को देखें जरा। मिर्ची घड़ी में सुख बज रहे हैं 10:22।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो यार, एक बात होता है कि खेल खेल में वक्त कैसे निकला, ये बात जो है ना जेन्युइनली समझ ही नहीं आई। अगर इस वक्त छुट्टियों को देखने की कोशिश करें भाई, घड़ी का कांटा कुछ तो इशारा कर रहा है।
2: मिर्ची अंशु
0: एब्सोल्युटली यार, ये बात पता ही नहीं चली कि कब गर्मी की छुट्टियों को देखने की कोशिश करें। तो 1.5 महीने का सफर आपने और हमने पूरा कर ही लिया, एंड अब महज 2 हफ्तों से भी कम की छुट्टियां बाकी हैं कि स्कूल जो है एक बार फिर से बच्चों के खुलने ही वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है हमारे लिए स्कूल शुरू होने के पहले के अभियान को। अगर हम देखें यानी कि बैक टू स्कूल इस पूरे के पूरे अभियान को देखें, तो घर में ना एक ही काम होता था भाई। 2 दिनों तक एक ही मिशन चलता था कि नोटबुक एंड बुक्स में ना कवर लगाना है। अब याद है आपको, वो जो कवर होते थे वो 2 तरह के आते थे। एक तो वो शाइनी वाला कवर होता था जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड एंड प्रीमियम लगा करता था, एंड दूसरा होता था वो नॉन शाइनी वाला, यू नो, एक मैट सा फिनिश का लुक होता था। हम जो है ना पूरे नोटबुक्स में बुक्स में कवर लगाने के अलावा कॉर्नर्स में सेलो टेप्स भी लगाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा OCD हुआ करता था एकदम कि साल भर जो है ना ये कवर जो है वो निकले ना फटे ना। क्या दिन थे यार। उसके बाद अपने चॉइस का वो स्टिकर लगाना। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे भाई को वो कार वाला नेम प्लेट चाहिए होता था, मुझे वो बारबी वाला नेम प्लेट। एंड उसके बाद हर नोटबुक को खोलने के बाद फर्स्ट पेज में अपना नाम लिखना, क्लास एंड उसके बाद सेक्शन एंड कौन से सब्जेक्ट की ये नोटबुक है। एंड इनफैक्ट वी वर सो स्पेसिफिक, क्लास 9A, B, C, वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर सेक्शंस, राइट। आज की डेट में इसी बैक टू स्कूल कैंपेन की बात करें, बच्चों के लिए कितने सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज आ चुकी हैं, कितने सारे ऑफर्स एंड प्रमोशंस आ चुके हैं। मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरे एंटरटेनमेंट के साथ उनकी तैयारी की जाती है। क्या दिन है यार, जमाने एंड दौर के साथ चीज़ें कितनी बदल गई हैं, है ना। चलिए मुझे एक बात बताएं, कतर के तो कोने कोने में बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू हो चुका है, मिर्ची का भी बैक टू स्कूल अब तक का सबसे बड़ा अभियान जो है वो आने ही वाला है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपके बचपन के दौर में आपके बैक टू स्कूल की तैयारी किस तरह से हुआ करती थी? यू नो, कैन यू रिलेट टू मी विद दैट कवर एंड एवरीथिंग, नोटबुक्स एंड बुक्स? इफ यस, देन गिव मी अ थम्स अप। 5000 1896, 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल ये अगला पावर पैक गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला,

0: रंजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, एंड व्हाट अ लवली टेरिफिक खूबसूरत सा गाना इट इज. बस ये गाना जो है, मैंने अपने दिल के जज्बात आप तक पहुंचाए, यही कहना चाहूंगी.
1: मिर्ची अंशु.
0: Well, दिन का वो वक्त आ चला है जब कुछ तो खास एंड स्पेशल आपके बीच पेश कर ही दिया जाए. एंड इस वक्त अगर खास एंड स्पेशल की बात करूं भाई साहब, तो इतना समझाए, खबर जो है अगर सीधा कहीं से आती है तो वो है हमारे इलाके से. हमारे इलाके बोले तो भाई साहब हम बात कर रहे हैं वकरा की. एंड वकरा की आन बान शान की अगर मैं बात करूँ तो अल जनूब स्टेडियम का नाम ना आए तो एक बात बताओ भाई किसका ही आए. एंड इस वक्त अल जनूब स्टेडियम जो है पूरी तरह से राजाओं की तरह राज करने की तैयारी कर रहा है. ये बस वही स्टेडियम है जिससे ना जाने फीफा वर्ल्ड कप के समय कितने सारे खूबसूरत यादें हम सब की जिंदगी में लेकर आया. ये वही स्टेडियम है जहाँ पे ना ही सिर्फ हमने फुटबॉल का मैजिक लाइव विटनेस किया बल्कि फैंस बनकर अपनी जिंदगी को दिल से जिया. अब यही एक वही स्टेडियम है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कोई और वर्ल्ड कप अपने इलाके में अपने पास लाने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू बी फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027. एब्सोल्युटली आपने पूरी तरह से सही सुना. इतना बता दूं अब पूरी तरह से अल जनूब स्टेडियम को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के उस कोर्ट के फॉर्म में जहां पे दुनिया भर के बड़े से बड़े दिग्गज आकर अपना हुनर दिखाएंगे. मतलब फुटबॉल से बास्केटबॉल तक का सफर कोई और तय करे ना करे, खिलाड़ी करे ना करे, लेकिन हाँ अल जनूब स्टेडियम ने करने की पूरी तैयारी जो है ना 101% कर ली है. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. एंड ऑगस्ट 27 वो पहली तारीख होगी जब इस आइकॉनिक वेन्यू में ऑफिशियली दरवाजे खोले जाएंगे बास्केटबॉल के लिए, क्योंकि अल जनूब अरीना अगर कुछ होस्ट करेगा सो दैट इज गोइंग टू बी कतर्स क्लैश विद चाइना इन द फोर्थ विंडो ऑफ द एशियन क्वालिफायर्स फॉर द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027. तो बस इसके मैजिक को लाइव विटनेस करना है तो अगस्त 27 को यहां पर पहुंच जाएगा. बाकी साल 2027 में आप और हम मिलकर वर्ल्ड कप तो यहां पर एंजॉय करेंगे. आप मेरे मोहल्ले मेरे गली इलाके आएंगे जी, स्वागत दिल खोल के किया जाएगा आपका. अच्छा एक बात बताओ, कोई वकरा वाले मुझे सुन रहे क्या इस वक्त, वकरा या वकेर वाले? 5000 1896 जरा हाई हेलो तो कर दूं. वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. 5000 1896 इंस्टाग्राम में मुझसे जरूर कनेक्ट करना. मिर्ची अंशु या मिर्ची वन कदर. अभी फिलहाल जैस्मिन सैंडलस की आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, एंड हाई इस गर्मी को तरसना है मुझ पर गाना सुना देती हूँ. एंजॉय बंदी का नाम अंशु.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
2: You know, I was very nervous क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं nervous थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी। अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे देंगे कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वॉज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: भाई गुरु रंधावा की आवाज में इतना बता दूं, कत्ल करने का काम कोई इंसान करे ना करे, लेकिन ये जरूर हैं जो कातिलाना अदाओं के साथ हमारा कत्ल करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: मतलब हमने तुम्हें दिल से इतना चाहा, तुम्हारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोला, तुम में रोशनी ढूंढने की कोशिश की, अपनी जिंदगी को तुमसे उजागर किया, एंड हाय तुमने हमारे इश्क का, मोहब्बत का, मान सम्मान का कुछ ऐसा सिला दिया। ना ना ना ना संजय लीला भंसाली की कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही मैं। क्या है ना, जब जब ऐसा कुछ कोहराम मेरी जिंदगी में मचता है तो मेरे अंदर का शायर कुछ इस तरह से बाहर निकलता है कि ऐसे जज्बात शब्दों के जरिए बस फ्लो, यानी कि फ्लो फ्लो होने लगते हैं। वैसे ग्लो अगर आपको करना है, नेचुरल वाला ग्लो, ना नहाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं है। सच कह रही हूं, ये तीनों का तीनों काम जो है ना एक साथ तुम्हारी जिंदगी में करवा के छोड़ूंगी। एक ही काम करना है बस, बाहर जाकर हुजूर 10 मिनट के लिए खड़े तो हो, देखो उसके बाद बिना नहाए तुम पानी पानी की तरह गीले कैसे होते हो, एंड हाय स्किन में वो जो नेचुरल एक लेयर आएगी ना पसीने की, वो क्या तुम्हारी स्किन को ग्लो करेगी, एंड उसके बाद वो एक ऐसा टैन जमेगा कि मैं सच कह रही हूं फाउंडेशन का एक डार्कर शेड खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिकली नेचुरली होगा, और हम लोगों के साथ तो ज्यादा ही होता है। मुझे समझ नहीं आता ये विदेशी लोग आके ऐसे धूप में दो दो घंटे बैठते हैं, ये उनकी स्किन तो टैन नहीं होती, हम क्या 30 सेकंड्स छोड़ो 10 सेकंड भी बाहर कैसे खड़े हो जाए, 6 महीने तक वो टैनिंग जाती नहीं है। नाइंसाफी बड़ी नाइंसाफी है, गर्मी परम चरम सीमा में पहुंच चुकी है। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अराउंड 48, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। खूब ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, बाकी कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए मेरे साथ बने रहें, सुनते रहें मिर्ची, इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु।

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, वन रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: आदत से हुई ना हाय, पेट में अलग तबाही अच्छी वाली जरूर मची है।
2: मिर्ची अंशु।
1: देखो बात इतनी है कि पेट में तबाही तो मची है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खलबली जो है ना, हाय हाय क्या गजब की मची है। इसके बारे में बताएं तो क्या ही बताएं, लेकिन आखिरकार किसने मेरी जिंदगी में ये हाल किया है? कोई ना, आपके साथ भी ऐसा कुछ जरूर हुआ है। इनकी कहानी जो है एक पहेली के जरिए मैं अब आपके आगे बयां करने वाली हूँ। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, मुझे फटाफट से बस ये बताना है कि इस वक्त खाने की वो कौन सी डिश की कहानी मैं बयां करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आपकी जिंदगी में आसानगी में कुछ इस तरह से ले आऊं कि ये बता दूं, ये एक डेजर्ट है, ये एक मीठा है। अब आप ध्यान से इस पहेली को सुनेंगे, इसे बुझाएंगे एंड जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि ये है तो है कौन, एंड अगर करेक्ट आंसर पता चल गया ये कौन है, एंड अगर ये आपकी भी उतनी ही फेवरेट है जितनी की मेरी है, तो फटाफट से भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। तो जरा गौर से सुनने की तैयारी शुरू करें। देखो जी, मैं गोल गोल उलझी हूं पर कोई सवाल नहीं, मीठी इतनी कि मिठास की मिसाल कोई नहीं, घी या तेल में नहाकर चाशनी में गोते लगाती हूँ, बताओ तो जरा मैं कौन हूँ जो सबको ललचाती हूँ। देखो, गोल गोल उलझी हूँ पर कोई सवाल नहीं, मीठी इतनी कि मिठास की मिसाल कोई नहीं, तेल या घी में नहाकर चाशनी में गोते लगाती हूँ, अरे बताओ तो जरा मैं कौन हूँ जो सबको ललचाती हूँ। जल्दी से बता दो जी, ये कौन सी डेजर्ट है जिसकी कहानी मैंने अभी अभी बयां की है? आपके ऑडियो मैसेज के इंतजार पर बंधु कविता सेठ नीरज श्रीधर की आवाज में गाने सुना दूं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से मुझे
2: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: है
1: मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी शाम एक स्टेज और दो कमाल टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स
3: मिर्ची फ्रेश माल
6: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना।
1: सुबोध शर्मा की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, ये ब्रांड न्यू पावर पैक खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जो दास्तान मैंने आपको सुनाई थी वो कहानी दरअसल आपने पूरी करनी थी, याद है ना?
2: मिर्ची अंशु।
1: हाँ जी सरकार, कोई तो खाने की एक खास डिश है, एक डिजर्ट है जिसकी पहली मैंने आपके सामने पेश की एंड आपको खुद बुझाकर बस मुझे ये बताना था कि ये कहानी है तो है किसकी। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया फटाफट से मैं एक बार फिर से सुना दूं, आप तक पहुंचा दूं। क्या है ना यार, जब भी बात खाने की होती है मेरा दिल जो है ना खुशी से गदगद हो जाता है, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फूडी। एब्सोल्युटली नहीं, मतलब मेरे शरीर को देखकर लोग जो है कई तरह की बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भैया इसको पकड़ के रखो तेज हवा चलेगी तो फूक करके उड़ जाएगी। भैया हमारे शरीर पे ना जाओ, खाने से प्यार इश्क मोहब्बत हमको भी है। और ये जो खास डिश है ना ये तो मुझे बेहद पसंद है एंड अगर आपको भी पसंद है तो आप इसे जरूर पहचानेंगे एंड करेक्ट आंसर जो है मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन कहां, 5000 1896, आई विल ईगरली वेट फॉर योर मैसेजेस एंड हियर यू गो। गोल गोल उलझी हूं पर मैं कोई सवाल नहीं, ये तो मेरी कहानी होगी। मीठी इतनी कि मिठास की मिसाल कोई नहीं, भाई घी या तेल में नहाकर चाशनी में गोते लगाती हूँ, अरे बताओ तो जरा मैं कौन हूँ जो सबको ललचाती हूँ। बल गोल गोल उलझी हूँ पर कोई सवाल नहीं, मीठी इतनी कि मिठास की मिसाल कोई नहीं, तेल या घी में नहाकर चाशनी में गोते लगाती हूँ, अरे बताओ तो जरा मैं कौन हूँ जो सबको ललचाती हूँ। जल्दी से बताएं कि ये जो पहेली है मैंने बुझाई तो किसकी कहानी बताई, 5000 1896। मीनवाइल अरिजीत सिंह की प्यारी से आवाज में ये अगला गाना आप तक पहुंचा दूं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार. ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जो प्यारी सी कहानी आपने हमने शुरू की थी उसे पूरी कर ली जाए.
1: मिर्ची अंशु
0: मतलब से कुछ देर पहले बस कोई तो पहेली मैंने आपके बीच पेश की जो आपको थी बुझानी, और मैंने कहा था इस पहेली में छुपी है कोई तो मीठी सी कहानी, यानी कि एक डेजर्ट एक मीठे का नाम. एक काम करते हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर आप तक पहुंचाऊं, उसके पहले मैं आपको पहेली फिर से सुनाऊं. आप जो अभी अभी सुन रहे हैं, अगर लगे कि भैया अभी अभी सुन के भी करेक्ट आंसर पहचान लिया तो भेज देना 5000 1896 पर. सो हियर वी गो. गोल गोल उलझी हूं पर कोई सवाल नहीं, मीठी इतनी की मिठास मिसाल नहीं. घी या तेल में नहाकर चाशनी में गोते लगाती हूँ, अरे बताओ तो जरा मैं कौन हूँ जो सबको ललचाती हूँ. बल जितने भी आंसर्स आए हैं ये पूरी तरह से करेक्ट हैं. 99% लोगों ने लिख के भेजा है, कुछ आवाजें हैं वो भी पहुँचाती हूँ.
2: अंशु जी, आप जलेबी की बात कर रही हैं, राइट?
3: हाय, दिस इज जलेबी भैया.
0: एब्सोल्युटली, आपने जिस अंदाज में कहा है हाय, आपने तो जलेबी की और भी याद दिला दी. इसका जवाब है दैट इज जलेबी. थैंक यू सो मच एवरी सिंगल पर्सन हु रिस्पॉन्डेड, बीट मोहम्मद, अहमद, पूनम, गितेश, शकुन, बहुत सारे लोग हैं यार. कुछ नाम जो ऊपर थे वो मैंने आपके बीच लिए. एवरी सिंगल रिस्पॉन्स इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड. बिल्कुल ये है जलेबी. एंड जलेबी के बेस्टेस्ट बड़ी की मैं बात करूँ ना, तो बचपन के दिनों में हम जलेबी खाया करते थे गर्मा गर्म पोहे के साथ. इनफैक्ट जलेबी

का एक और दोस्त है, वो है समोसा। लेकिन अगर मीठे मीठे दोस्त दोस्त की बात करें तो भैया जलेबी को रबड़ी के साथ ना खाया तो फिर क्या ही खाया। लेकिन आपको पता है जलेबी की एक बड़ी बहन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ इसे कहते हैं इमरती। ये भी ऑरेंज कलर की होती है लेकिन थोड़ी बड़ी होती है, जरा और फुली फुली सी होती है। एंड जलेबी से ज्यादा मुझे ना इमरती पसंद है। आप क्या इमरती को बेसिकली क्या कहते हैं, फिर एबल टू विजुअलाइज, वो और खूबसूरत से फूल के फॉर्म में बनाई जाती है, मतलब गोल गोल होते हैं एंड साइड में पूरे ऐसे पेटल शेप के फ्लावर्स बने होते हैं। सो व्हाट डू यू कॉल इट बेसिकली? एंड क्या ऐसी कोई जगह है कतर में जहां मुझे इमरती मिले? यार जलेबी तो कई जगह मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, लेकिन आई एम क्रेविंग सम इमरती टुडे। मुझे बताओ यार मुझे इमरती कहां मिलेगी? 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशू। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज शाश्वत सिंह का साथ, यानी अगला प्यारा सा गाना एंजॉय। बंदी का नाम अंशू।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: But I remember one such party जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: हर्ष किसी की खूबसूरत सी आवाज़ यानी प्यारा सा गाना। देखो चुनरिया के रंगने की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमारे दिमाग के हर एक रंग को पहचानने और पकड़ने ये जरूर आ रही है।
1: मिर्ची अंशु।
0: हाला एक बात बता दो, आप और हम जो है ना दोनों ही बड़े कमाल हो गए यार। मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिल में अरमान है, ख्वाहिश है, लेकिन हाँ हम एक बात ज़रूर सोचते हैं कि ठीक है यार हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, यूं ही कहीं से टिकट्स अरेंज कर लेंगे। यार मैं एक बात कहूँ, जितने भी वो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिन्हें आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन में देखा है, जिनके बारे में अखबारों में पढ़ा है, या कोई दोस्त यार की स्टोरी में देख के उन्हें एन्जॉय करते हुए देखा है, लगा भाई क्या मज़े कर रहा है, क्या मस्ती कर रहा है, यू नो, एंड आपने उन मौक़ों को अपनी ज़िंदगी में गंवाया है ना, तो हो एक बात मत सोचना कि बस एक इवेंट ही तो था जो छूट गया। भाई एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत गजब एक्सपीरियंस है जिससे आपने खुद को अछूता रखा, ये बात जो है ना हमेशा समझना। बॉस हम ना कतर में हैं एंड कतर में रहने की वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी फीजिबिलिटी है कि वो सारे मेगा इवेंट्स, टूर्नामेंट्स, स्पॉटिंग इवेंट्स या ऐसे कॉन्सर्ट्स और ख़ास स्पेशल इवेंट्स जो है ना हम अपने आस पास इतने करीब से आए दिन महसूस कर पाते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना तो प्लीज़ इसे गवाएं ना, जितनी जल्दी हो सके इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ना। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से अगर कोई लेकर आ रहा है तो वो है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, यानी कि हम यार मिर्ची की बात कर रही हूं मैं। अब तक तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 25th of September व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कतर सुहानी शाह विल बी परफॉर्मिंग लाइव एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। अभी भी इस वक्त भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, टिकट्स जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे आप क्यू टिकट्स चाहें, स्नोनू सिटी चाहें, आप अपनी टिकट्स जाकर बुक कर सकते हैं एंड 20% ऑफ है हर एक टिकट कैटेगरी में। इनफैक्ट अभी एक और स्पेशल ऑफर है जहां फन 60 रियाल में आपको दो टिकट मिल रही है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, सुहानी के मैजिक को देखने के लिए ना बड़े बड़े दुनिया भर के दिग्गज आते हैं, तो आप और हम हमारे जैसे दिग्गज जो है पीछे हटे तो क्यों ही हटे, चले यार मज़ा आएगा, अपने दिमाग के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, कुछ अनपढ़ी कहानियों को अपने आगे उजागर करेंगे और हाँ किसी के जिंदगी के राज भी बस खुल ही जाएंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल एट सुहानी शाह लाइव इन दोहा। गो एंड ग्रैब योर टिकट्स नाउ। अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है, उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: सरूर की खूबसूरत सी आवाज और बड़ा मदहोशी तबाही वाला गाना भाई साहब, ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन मदहोश तो इस वक्त मुझे कुछ और एंड कोई और ही कर रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: ये जो बचपन से मैनेजमेंट का स्किल सिखाया गया ना भाई, इसने जिंदगी में कोई ना कोई मदहोशी जो है वो जरूर लेकर आया। अब किस तरह की ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है यार बचपन का वो दिन जब ना हर महीने हमें दिए जाते थे 100 रुपए, मुझे भी और मेरे भाई को भी। एंड घर का कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो हमें संभालना है, यानी कि मान के चले कि धोबी के जितने भी खर्चे हैं, यू नो जितने भी कपड़े आयन के लिए जाते हैं, प्रेस के लिए जाते हैं, वो डिपार्टमेंट मेरा था कि मुझे 100 रुपए के विदन उसे कैसे मैनेज करना है, पैसे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो किस तरह के कपड़ों को घर पे हम रख सकते हैं, घर कामकाज उसका निपटा सकते हैं। एंड कुछ ऐसा सामान सेम डिपार्टमेंट अगर किसी को दिया जाता था तो वो था मेरा भाई। एंड भाई बचपन से ही ना ये छोटा सा स्किल किस तरह से मनी को मैनेज करना है, कहाँ जरूरी है जहाँ खर्च करना है और कहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, ये छोटी सी बात किस तरह से हमारी हैबिट में शामिल हुई एंड देखते देखते लाइफ के हर एक फैक्टर में वो इम्प्लीमेंट हो गई, ये पता ही नहीं चला। बचपन में लगता था कि हम जो है ना काफ़ी बड़े हैं, मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, खुशी होती थी, लेकिन समझ में आया कि वो बच्चे को खुश करने के चक्कर में मम्मी पापा ने कितनी बड़ी लाइफ स्किल जो है हमारे अंदर ऐड कर ही दी। तो अगर अपने बच्चों में आपने अब तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना की, ज़रूर करना, आगे जाकर इसका मुनाफा होता है, सॉलिड होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। वैसे मदहोशी की बात करें तो जब एक्सचेंज रेट इतना कमाल हो तो ज़िंदगी में खुशी की लहर तो आती है एंड साथ ही हाय सैलरी के इंतजार में कोई ना कोई मदहोशी तो आ ही जाती है। वैसे अगर आपसे ट्रांसफर करना चाहिए तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 21.42, कैन यू बिलीव इट, पाकिस्तानी रुपीस 76.15, लंदन रुपीस 90.93, नेपाली रुपीस 41.93 एंड साथ ही बांग्लादेशी टका 33.48। तो वैसे अगर आज के हीरो की मैं बात करूं तो इंडियन रुपीस जो है आपकी हमारी जिंदगी में खुशी की लहर लेके जरूर आया है भाई। सैलरी के आते तक ये अपना सिलसिला बरकरार रखना, इतनी तुमसे गुजारिश दरख्वास्त। स्टेडियो टू मिर्ची बंदी का नाम।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga. Milci.
1: Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उन लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
1: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
0: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: हसन हाय अरवा जो है इस गाने को सुनने के बाद काफी सारे जाग चुके हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: हाला। हाँ जी, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार मुझे एक बात बताएं, जब सब कुछ इतना एक्साइटिंग एंड इतना खास आपके और हमारे लिए लाइंड अप है तो दिल में अच्छे अच्छे अरमान आ जागे तो फिर क्या ही हो। हैविंग सेड दैट, इस वक्त आपको ये बता दूं, सितंबर का महीना आते ही कतर में अगर आप कुछ देखने वाले हैं तो वो है गजब बेहतरीन इवेंट्स की बहार। फिर चाहे मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, एग्जीबिशंस की बात करूँ, कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स की बात करूँ, एंटरटेनमेंट की बात करूँ या कुछ खास ऐसे इवेंट्स जो आपको सोचने में मजबूर कर ही देंगे। तो भैया सितंबर में जहां पर एक तरफ बच्चों का कैलेंडर पूरी तरह से सेट होने वाला है, आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अपने एंटरटेनमेंट का कैलेंडर भी आप सेट करने की तैयारी कर ही लेना। भैया दो महीनों की छुट्टी आपने किस तरह से बिताई मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ असल रिजुवनेशन जो है सितंबर हमारी लाइफ में लेकर आएगा। जितना मुझे पता है बहुत सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं सितंबर के महीने में। सुहानी शाह आ रही है कतर 25 सितंबर को, ये तो आपको मालूम ही है। एंड इसके अलावा एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस भी कतर में अब शुरू होने जा रहे हैं एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड फाइनली द डी डे इज अराइविंग। क्या कुछ होगा ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ये तो सिर्फ टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: this track. When 90s के अगर आप lovers हो और ये गाने आपके दिल को नो ना लुभाए तो फिर क्या ही भाई?
1: मिर्ची अंशु
0: वेल सच कह रही हूँ यार, 90s के गानों की ना कुछ बात ही अलग है। या तो मैं ये कहूँ वो सारी बातें जिन यादों के साथ हम बड़े हुए हैं उनका हमारी जिंदगी में एक अलग ही रोल है। एंड कहीं ना कहीं आपने भी ये बात महसूस की होगी। इमेजिन करें वो आइसक्रीम वाले भैया जो हर दिन दोपहर के 2 बजे हमारे घर के बाहर आकर ठेले से घंटी बजाया करते थे। भाई उनकी घंटी की आवाज़ सुन के ना हमारे दिल में घंटी कहीं ना कहीं ज़रूर बजती थी। सच कहूँ 50 पैसे की उस आइसक्रीम ने हमारी ज़िंदगी में जितनी खुशी लाई है ना, आज की डेट में 50 रियाल की आइसक्रीम में भी शायद वो ताकत ना यार। वो गुपचुप का ठेला यानी कि पानीपुरी का वो ठेला, तो शाम की ट्यूशन के बाद मैं अपने दोस्त यारों के साथ बैठकर वहां खड़े रहकर चौराहे में न जाने वहां कितनी मस्तियां की हैं। आज न जाने कितने भी लैविश रेस्टोरेंट्स में हम क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो खुशी उस गुपचुप यानी कि पानीपुरी के वो स्टॉल वाले ठेले ने दिए ना, वो कोई और नहीं दे सकता। वो हमारी बाइसिकल जो 3 से 4 साल तक सेम रही, हमारे स्कूल में हमारी सफर रही, आज की डेट में हम बड़ी सी बड़ी गाड़ी भी चला लेना यार, वो खुशी मिले ये बहुत मुश्किल है। तभी तो मैं कहती हूँ कि बचपन की बातें, वो यादें जिन्होंने हमें बनाया है आज हम जो भी हैं, वो दोस्त, वो लोग, वो यार, भाई उनके बराबर है ना आप ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई यार है या ऐसी कोई कहानी है जो इस वक्त आपके दिल में छुपी है, जो बचपन की आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करती है, यार मुझे जल्दी भेजो। मुझे सुनना है आपके बचपन में वो क्या था जो आपके लिए सबसे खास, सबसे स्पेशल था। 5000186 5000186 I'm waiting for your messages. Instagram Mirchi1Kataria Mirchi Anshu। वैसे मेरे लिए मेरी बाइसिकल थी वो लेडी बर्ड जिसके आगे एक बास्केट भी हुआ करता था। अरिजीत सिंह की आवाज, सुनिधि चौहान का साथ, यानी अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर,
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
4: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के।
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

साच भट्ट की आवाज सुबोध शर्मा के साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, एक इंडिपेंडेंट हिंदी ट्रैक जो कि रिलीज हुआ साल 2007 में। वैसे इस गाने से कोई तो खास याद है, बताएं आपको। मिर्ची अंशु। भाई साहब इतना बता दें कि साल 2007 की अगर हम बात करें और इस रिश्ते की बात करें तो ये दोनों ही बड़ा स्पेशल है, क्योंकि अगर साल की बात देखें तो भैया ये वही साल है जब मिर्ची का आगाज देश दुनिया में हुआ, यानी कि आपकी जिंदगी में हुआ, द लॉन्च ईयर ऑफ रेडियो मिर्ची। बनारस की गली से हमारे बनारस के बाबू आरजे गौरव जहां आते हैं, बस इन्होंने अपने सफर की शुरुआत भी की नहीं, अब उनकी उम्र का अंदाजा लगाना जो है ये आप छोड़ दें, बड़े दिल से जवान है वो। हैविंग सेड दैट, अगर इस गाने की बात करूं तो बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह स्कूल टाइम पे हमने ये गाना सुना था। हाँ जी, मैं जब हूँ स्कूल में हुआ करती थी, एंड भाई वो जो पहला क्रश हुआ था ना, उसे देखकर दिल में बस यही ख्याल आता था कि भाई तेरा और मेरा ये रिश्ता, बोले तो क्या ही बोले। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है, स्कूल टाइम में ना अपने प्यार का इजहार करने का तरीका काफ़ी अलग होता था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इश्क प्यार मोहब्बत का एहसास बस इस बात से हो जाता था कि मैं स्कूल आके अपनी साइकिल को पार्क करने की कोशिश करूँ एंड भाई साहब उसकी साइकिल जो है मुझे नज़र आ जाए, या तो फिर प्रेयर के वक्त वो जो लंबी लाइनें होती ना, एक बार पलट के उसकी झलक दिख जाए, भाई समझो प्यार हो गया, इजहार भी हो गया, शादी वादी बाद में देखेंगे। वैसे एक बात बताएं, अगर आपसे पूछो तो आपकी जिंदगी में पहली दफा क्रश आपको किस उम्र में हुआ, ये मत कह देना पैदाइशी क्रश है हमारा। 5000018965000018 आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस, व्हाट्सएप पे इंतजार रहेगा एंड बाकी की चर्चा इस बात पे ना कल होगी जी। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु, मसला हबीबी।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vida la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीखी ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ। पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na, hamari nahi scheme aayi hai. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: सॉरी ना मैं, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
1: कुकड़ो को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: No Entry, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो No Entry था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है. लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक. ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर. मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं. लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिप से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था. एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था. अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन. और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे. हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं. मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े हैं ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जागल किया। मतलब कभी वो यहां होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है। मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन मर्दाना के पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
3: ये क्या सवाल है?
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

डॉन बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

0: स्प्लेंडर्स एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्च लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल। अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल, सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल। Cause it's time for मिर्ची back to school. Cause it's time for मिर्ची back to school.
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
3: Mirchi Ghadi mein bajne wale hain teen.
4: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical

हाय शर्मीली वावा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Bipasha Basu जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी.
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा. लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी. तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था. लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था. अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था. इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन इब्राहिम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे. यानी कि हुआ था सोने पे अभागा. लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए. एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी. आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. No fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। वेल, त्रिदेव का ये गाना

बीट है इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: ऐसे मौसम में तो भाई परफ्यूम ही असली माशुका बनता है। चिपचिपी गर्मी उमस का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे पानी पीने का। मेरे साथ और कौन आ गई है? यस, नाम है लेकिन ऐसे मौसम में सच में यार ठंडा पानी जो राहत देता है वो काम और कुछ कर ही नहीं सकता है। और इनफैक्ट ना कोई बाहर से एकदम पसीने में तरबतर आया हो ईशा, एक आइसक्रीम लो और उसके कपड़ों के अंदर डाल दे।
1: हाँ हाँ हाँ, ठंडा ठंडा
0: ठंडा।
1: लेकिन लेकिन पता है आज मैंने ना गाड़ी गलती से मेरी धूप में कहीं खड़ी हो गई। मैं जैसे ही गाड़ी पे बैठी
0: गर्मा गर्म कूल हो गई,
1: सब गर्म, ये गर्म वो गर्म, मेरा बुरा हाल हो गया गौरव।
0: एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों को इस वाले में शेडेड पार्किंग नहीं मिलती ऐसे वेदर में ना, उनसे पूछो कि जिंदगी में असली टॉर्चर क्या होता है।
1: बहुत बड़ा टॉर्चर है।
0: फिलहाल बस इतना ही कहूंगा, गाड़ी कहीं भी पार्क करो एक छाए की उम्मीद जरूर करो क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। एंड वो मौसम आ गया है जब हम कतर में किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते ही नहीं है, सिर्फ गुड आफ्टरनून बोलते हैं। शाम के 4:05 भी दोपहर वाली फीलिंग चल रही है।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी शुरुआत करते हैं शाम शानदार की मिर्ची पर। हमारे आपके बीच की जो दूरियां हैं उसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं मिर्ची पर अगले गाने के साथ। रेखा राघव, मिर्ची।
1: It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
3: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है, तो तेरा दिमाग खराब
4: हो रहा है, बत्तमीजी मत कर,
2: मुझे बात करने दे, पहले दो मिनट रुक जा।
4: तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: गर्मी
1: ओह भैया गर्मी तो एकदम चपक के पड़ रही है आपके पीछे। अच्छा ईशा एक चीज बताओ कि गर्मी में वो कौन सा ड्रिंक है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है?
0: मुझे
1: हाँ कौन सा ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद है?
0: जिसमें आइस हो ना मुझे वो पसंद है,
1: मतलब स्मूदी लस्सी
0: मीठा कुछ भी हो,
1: मीठा
0: ठंडा हो, ठंडा हो। वैसे तो रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद है।
1: तो बता लेकिन कतर को क्या पसंद है?
0: क्या
1: गर्मा गर्म करक?
0: ओ यस,
1: वेदर कोई भी हो हम तो करक के दीवाने हैं, वो सुलेमानी हो या फिर नॉर्मल करक सब चलेगा दोस्त। तो गर्मी नाम की चीज आती जाती रहेगी, मौसम के साथ दिन भी बदलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए करक आपका असली साथी है। और ऐसे मौसम में अगर सोचिए आप पसीने से तर बतर हो और एक गर्मा गर्म करक या सुलेमानी आपके हाथ लग जाए।
0: बात पे ना मुझे एक बात याद आई, वो कहते हैं ना गर्मी गर्मी को मारती है, तो बस कड़क ना गर्मी को मारती है।
1: तो चलिए जी, अब जब इसने इतनी बात कर दी है तो हम भी गर्मी को मार के आते हैं। लेकिन जाने से पहले बस इतना बताना चाहते हैं कि अगले कुछ गाने आपके दिलों को एकदम से जीतने आ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके आप यही कान टिकाए रहो।

0: तुम किधर भी मत जाओ, ये सारे गाने अब से कुछ देर में तुम यहाँ सुनो।
1: क्या सुर लगाया गौरव जी, बस बस क्या सुर लगाया।
0: इससे पहले मैं बेसुरा और आगे गाऊं, आप अच्छे गाने सुनते जाओ मिर्ची।
1: इट्स हॉट
2: कलंग।

0: अगली बार गाड़ी ठीक से खड़ी करना, तुम तुमसे नहीं सबसे कह रहा हूँ मैं।
1: और अब तुम मुझे टॉन्ट मारते रहोगे?
0: नहीं, नहीं, तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगली बार पार्किंग करने से पहले आपको कुछ जरूरी देखना है। हाँ जी, और मैं बात कर रहा हूँ पार्किंग की, जो कि कहरामा के कई सारे सर्विस सेंटर्स के आसपास होती है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन कहरामा ने हमसे कही है। उन सिटीजन और रेसिडेंट्स से ये कहा है कि उनकी जो फैसिलिटीज होती है, तुमने देखा होगा कि हम अक्सर जब भी मतर कदीम साइड या कहीं भी जाते हैं, वहां पर कहरामा का एक रूम बना होता है।
1: एग्जैक्टली
0: वो लोकेशन जहां पर एरिया का शायद फीडर ट्रांसफॉर्मर सब होता है, उसके आसपास आपको गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। ये एक तरह से कहरामा के काम में इंटरप्शन जैसा है। उनका ये मानना है कि उनकी फैसिलिटीज और जो उनके सर्विस कनेक्शंस है, उस इक्विपमेंट के आसपास थोड़ा सा आपको जगह बनाए रखनी है, क्योंकि कभी कुछ ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कहीं फायर हो जाती है, तो ये जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस जगह को फ्री रखें। अक्सर हमने देखा है येलो पेंट होता है, नो पार्किंग होती है, लोग मेक श्योर करते हैं कि वहीं वो पार्क करें क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या ही हो जाएगा। तो याद रखिए, कहरामा ने ये आपको वार्निंग भी दी है, आपसे रिक्वेस्ट भी कही है, और हमारे कतर के लिए सेफ्टी के लिए ये नेशनल ड्यूटी के तौर पर आपको अपनाना है। अगली बार जब आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो मेक श्योर यू शुड नॉट इंटरप्ट कहरामा का कोई भी सर्विस स्टेशन, उनका कोई भी इक्विपमेंट। ये हमारी और आपकी सेफ्टी के साथ साथ इस नेशन की सेफ्टी है, जहां पर हम रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और मजबूत बन रहे हैं।
1: एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम कहरामा ऑल्सो ना, कि आप कहीं कहीं ना कहीं नोटिस करोगे कि फायर एक्सटेंशन का भी वहां निशान बना होता है, वहां लोगों की फ्रंट एरिया जो है वो हमेशा वेकेंट रखना है।
0: यस, फायर एक्सटिंग्विशर के पास भी लोग खड़े रहते
1: हैं,
0: वो सब भी ध्यान रखना है। चलो, उम्मीद है, उम्मीद है आप समझदार हैं, आपकी तरफ हमने इशारा और पूरी पूरी खबर पहुंचा दी है, अब आप समझदारी दिखाएंगे। हम फिलहाल मूव इट लाइक गाना लेकर आ रहे हैं बादशाह की तरफ से, मिर्ची पर
1: इट्स ऑन।

0: its decades of excellence in Qatar. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever.
1: Kumar Sanu, अलका याग्निक, ये आवाज में था गाना, सुनाया किसने?
2: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
3: और गर्मी के हालात कौन सुनाएगा?
1: अरे वो भी सुनाते हैं, वो भी सुनाते हैं, चिंता मत करो। हैं जी, हाँ जी, मिर्ची ईशा आ गई, लेके आ गया मस्त मौला गौरव। लेकिन इन सबके बीच गर्मी का जो पारा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
4: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
5: वेदर अपडेट,
3: 41 डिग्री सेल्सियस।
1: ये अभी राइट नाउ का तापमान है। दिन का मैक्सिमम तापमान पहुंचा था 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एंड एट द लोएस्ट पॉइंट इट विल गो अराउंड 32 डिग्रीज। यस, और 32-42 के बीच में जो हमारी 32 पीस रही है वो कोई नहीं देख रहा है।
3: और फील लाइक क्या है गौरव?
1: फील लाइक मत पूछो, फील लाइक तो मतलब आप जितना फील कर ले। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ईशा, गर्मी और बेइज्जती जितनी फील करोगे उतनी ज्यादा लगेगी, इसलिए ज्यादा फील मत करो। वैसे ये रियली इट्स फील वेरी हॉटर देन व्हाट इट्स एक्चुअली इज। मतलब हम भले ही सोचे 43, लेकिन कार के अंदर कभी कभी 50 वाली फीलिंग आ रही है। लग रहा है कि कुकीज लेके आ गए होते तब तक बेक हो जाती।
3: मुझे तो लगा अंडा ही बना लूंगी गाड़ी में आज
1: बोनट पे
3: सही में।
1: लेकिन फिलहाल अभी टेम्परेचर कुछ दिन ऐसे ही बना रहेगा, पर मैं आपको बता दूं वीकेंड पर डस्टी विंड्स की संभावनाएं हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम नहीं हुई तो ये भी आपके किसी काम की नहीं है। इसी उम्मीद में कि पानी पी पी के आप गर्मी को कोस रहे, ताकि सूरज चाचू ह्यूमिडिटी आंटी जल्दी जल्दी जाए। मस्त मौला गौरव इसे आगे बढ़ते हैं और वीकेंड का प्लान भी सेट करने की कोशिश करते हैं।
3: हाँ, वीकेंड्स पे बताऊंगी क्या क्या होने वाला है इस वीकेंड। तो मैं वीकेंड पे भी आऊंगी भाई,
1: आऊंगी वीकेंड पे आऊंगी, ऐसा मत सोचिए, आज ही आई है। फिलहाल नदियों पार की तरफ बढ़ते हैं और मिर्ची पर ये गाना सुनते हैं। इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हाँ जी, मिर्ची घड़ी में टाइम हो गया है शाम के 5:02 की तरफ बढ़ने की तरफ। तो भाई आइए शुरुआत करते हैं शाम शानदार के इस घंटे की।
2: हाँ।

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. It's hot. मिर्ची फ्रेश माल.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये आवारापन, लेकिन हमें बचपन में बहुत सुनने को मिलता था मम्मी से, आ गया हमारा घर देख करके।
2: मस्त मौला गौरव।
1: यार मतलब 2 घंटे ज्यादा मैच खेल लो तो ये डायलॉग घर का एकदम फिक्स डायलॉग होता था कि आ गया हमारा घर देख करके। तब क्रिकेट मतलब हमारा घर भी होता था, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इन सब के बीच आ गया मस्त मौला गौरव इस घंटे लेकर, वो कॉन्टेस्ट जिसको आप अक्सर मेरे साथ खेलते हो और इस बार बारी फिर आ गई है। पहचान कौन में एक आवाज सुनाऊंगा, आपको पहचाननी होगी ये किस आर्टिस्ट की आवाज है। जरा ध्यान से सुनिए आज की।
3: I remember telling राजू जी की, राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया वाला जो सीन था, जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये जरूर करेगा या किया है। So these are very defining moments I'll never forget in my career।
1: हाँ जी, बहुत ही प्यारी आवाज, उससे ही प्यारा करेक्टर, जिस फिल्म में आते हैं वहाँ छा जाते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए।
3: आई रिमेम्बर टेलिंग राजू जी की, राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया वाला जो सीन था, जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये जरूर करेगा या किया है। सो दीज आर वेरी डिफाइनिंग मोमेंट्स आई विल नेवर फॉरगेट इन माय करियर।
1: चले जी, डिफाइनिंग मोमेंट तो आपके लिए है कि अगर आपने ये आवाज पकड़ ली तो 5000196 पर वॉइस नोट अपना जवाब जरूर भेज दीजिए। और पहला जवाब आ गया है। हाँ जी, बहुत ही तेजी से अमरिक साहब ने भेजा अपना पहला जवाब। अमरिक साहब, राइट नेम लिखना है, आपने करेक्टर का नाम लिख दिया है। राइट नेम ऑफ द आर्टिस्ट जिनकी आवाज मैंने अभी यहाँ प्ले की और आपके कानों तक पहुंचाई है, ये कौन सा सुपरस्टार है जिसकी आवाज यहाँ आ रही है।
3: आई रिमेम्बर टेलिंग राजू जी की, राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया वाला जो सीन था, जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये जरूर करेगा या किया है। सो दीज आर वेरी डिफाइनिंग मोमेंट्स आई विल नेवर फॉरगेट इन माय करियर।
1: 5000196 5000186 पर अपना जवाब भेजते रहिए वॉइस नोट में कि गौरव जो आवाज सुना रहे हो वो हमारे इस एक्टर की है। 5000196। फिलहाल संजू राठौर की आवाज सुनाएंगे क्योंकि लाल लाल कलर की बांगड़ी लेके आ गए मिर्ची पर। छोड़

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: मालूम
2: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं
1: मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े एक लड़का दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स है जवानी तो इश्क होना है स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5 डाउनलोड द ऐप नाउ
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: माँ कुठी जुबिन नौटियाल के बाद में एक गाना सुना दिया हमने
1: मस्त मौला गौरव।
0: और इस घंटे हम और आपके साथ मिलकर खेलते हैं
2: पहचान कौन।
0: वाह वाह, पहचान कौन में एक आवाज सुनाते हैं, पूछते हैं बताओ ये किसकी आवाज है।
3: रिमेंबर टेलिंग राजू जी की, राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया वाला जो सीन था, जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये जरूर करेगा या किया है। सो दीज आर वेरी डिफाइनिंग मोमेंट्स आई विल नेवर फॉरगेट इन माय करियर।
0: एंड इनके फैंस भाई बहुत सारे हैं, इसलिए देखिए जवाब एक भी गलत नहीं।
4: गौरव भाई,
0: हाँ जी,
4: आर माधवन की आवाज है।
0: ओके
5: गौरव, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
5: विनोद हियर, आवाज आर माधवन की।
0: ओके
6: गुड इवनिंग गौरव
0: जी भाई,
6: गुड इवनिंग, कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया।
6: हां, ये आवाज है आर महादेवन की।
0: ओके
6: एंड आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट थ्री इडियट फिल्म, आई एम नॉट श्योर। ओके थैंक यू, बाय बाय।
7: गुड इवनिंग आरजे गौरव।
0: हां जी,
7: ये वॉइस है एवर ग्रीन, एवर स्माइलिंग, एवर यंग, आर माधवन की।
0: अरे वाह, इसके अलावा सीता जी आर माधवन बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसके अलावा बात करें तो एक और जवाब यहाँ पर है, ये है आर माधवन। लेकिन भाई अल्फाबेट सब जापानीज में क्यों है, हैं जी फिलहाल। इसके अलावा सुफियान भाई बिल्कुल सही जवाब, गोपाल जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, एंड वेंकटेश भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है, आर माधवन, दीपक आर माधवन इज बिल्कुल सही। एंड अगर बात करें तो अफशाना बिल्कुल सही, आर माधवन, संजीव आर माधवन बिल्कुल सही है, अहमद भाई, ए अहमद भाई, यस ये भी बिल्कुल सही है, एड्रियन बिल्कुल सही जवाब है, मुइद्दीन बिल्कुल सही जवाब, फहद आर माधवन। अरे भाई मतलब आर माधवन के फैन फॉलोअर्स के लिए पहले तालियां हो जाए, एक 10 सेकंड की वॉइस क्लिप में पकड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं आर माधवन आर माधवन, हम तो कंफ्यूज हो जाते। आप स्मार्ट हो, अगला गाना आपके लिए हमारी तरफ से, थोड़ी कमरिया हिलाते हैं मिर्ची पे छा।

0: नहीं पढ़ पाई हूँ
1: भाई, आप मास्टर नहीं कर सकते ये चीज़ भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है यू नो, किसी का माइंड रीड करना।
0: तो मौका मिलेगा तो तुम स्टेज पे उसको ढकल दोगी ताकि सुहानी उससे कुछ पूछ ले?
1: धक्का मार के
0: ये तो कर देगी, लेकिन मैं कहता हूँ आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, आपको थोड़ी सी धक्का मारनी है अपने वॉलेट को, और जैसे डॉलर थोड़े बहुत रियाल निकल जाएंगे, डॉलर भी रियाल मांग रहे
1: हैं,
0: अरे 3.6567 चलता है, तो बस ये याद रखिए कि जैसे ही आप धक्का मारेंगे अपने वॉलेट को ये पैसे निकलेंगे, तो आप उस एक्सपीरियंस रूबरू होंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया है।
1: Exactly, यार।
0: Trust me, mentalist वो होता है जो वाकई में आपको कोई मैजिक दिखा रहा है, लेकिन इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर रहा है कि आपको सब कुछ रियल लग रहा है। वो खुद कहती है, सुहानी खुद कहती है कि ये दिमाग पढ़ना अगर इतना आसान होता तो मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों का दिमाग पढ़ के सब बता देती क्या चल रहा है। सो शी इज रीडिंग योर माइंड बट इन अ वे वेयर शी इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन, यानी कि वो आपको ऐसे ऑरा में ला देती है कि आपको लगता है सब सच हो रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। 25th of September QNCC अपनी टिकट्स बुक कीजिए, ऑल मेजर लीडिंग प्लेटफॉर्म पर ये टिकट मिल रही है, क्यू टिकट्स या फिर प्लेटिनम लेस SCT स्नूनू पे। लेकिन एक फायदा मिल रहा है, पता है क्या
1: फायदा?
0: अगर आप स्नूनू से टिकट ले रहे हैं ना, तो 30 कतरे रियाल का कैशबैक टाइप प्राइस है, मतलब जहां पर आप उसको यूज कर पाएंगे, तो ये 30 कतरे रियाल आपको SCT पे वापस भी मिलेगा।
1: तो आज ही अपनी सहेलियों को बताने वाली हूं, जल्दी से बुक करवा लो।
0: अब मेरे दोस्त अर्जुन तुमको सुनाई दे रहा है, देखा मौके पे चौका लगा दिया ना, फायदे की बात करा दी तुम्हारे लिए, हैं जी, फटाफट से टिकट बुक करो क्योंकि ये एक्सपीरियंस छोड़ने ही है।
1: मैं जा रही हूं टिकट बुक कराने और मैं निकल रही हूं भाई।
0: चलो बाय बाय ईशा, तुम जाओ रेस्ट करो, बहुत काम करती हो ईशा, तुम आती हो 1.5-2 घंटे मेरे पास बैठती हो, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी बात नहीं।
1: आपको सुनना, सहन करना,
0: बस बस बस बस, ज्यादा तारीफ
1: ना करो, दिल को
0: तुमसे प्यार हुआ। अगला गाना है भाई, क्या सोच सकते हैं आप, मिर्ची इट्स ऑल।

0: ईशा, अगर तुम्हें मौका मैं दूं कि किसी एक इंसान का दिमाग तुम सुहानी से पढ़वा सकती हो तो वो कौन होगा? बताओ बताओ ईशा।
1: मेरा पति।
0: तुम अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई हो, तुम अपने पति के दिमाग

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता क्या चले जाएंगे इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के सिवाय जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे टीएनसी अप्लाई
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

गुलाबी अमल मलिक तुलसी कुमार यश नार्वेकर की आवाज में हमने सुना दिया और नाम है हमारा फिलहाल आज मस्त मौला गौरव बिल्कुल मस्त नहीं है। एक तो 15 तारीख हो गई है, जेब से पैसे गायब है, लेकिन रेट जबरदस्त है। देखिए हालात को देखते हुए इस समय आपको जबरदस्त पैसे मतलब इंडियन रुपीस मिल रहे हैं, एक कतरी रियाल के बदले 26 रुपए 25 पैसे 26.25 ऑफ इंडियन रुपीस, यानी कि 26.25 इंडियन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। वहीं लंकन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 91.04। वहीं अगर हम बात करें जनाब पाकिस्तान रुपीस की, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.15 पाकिस्तान रुपीस के बाद तपाईको नेपाली रुपीस रेट का रेट छ जाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.93 का रेट छ बहिनी, हाँ जी 41.93 को रेट छ। अगर आप नेपाली रुपीस घर भेजने लाइ तो सही टाइम छ 41.93 को बाद अगर हम बात करें बांधु बांग्लादेशी टका का दादा एकटा कतरी रियाल के बदले 33.49 ऐटा रेट आचे तो बांग्लादेशी टका छिके तो मस्त मोलो गौरव के साथ अगला गाना। बस कोको कोला पी के शांत रहो क्योंकि पैसे तो है नहीं, मन में कलप हो रही कि रेट्स अच्छे मिल रहे तो पैसे नहीं मिर्ची इट्स

0: तुम ही दिन चढ़े आ गए, शाम चढ़ते ही हम आ जाते हैं, नाम ही हमारा मस्त मौला गौरव। इन फिलहाल घड़ी का टाइम चढ़ गया है शाम के 6:06 से ज्यादा की तरफ।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए जी, मस्त मौला गौरव हमेशा आपके साथ रहता है, ढेर सारी बातें करता है और आज एक बार फिर से बातों की दुकान लेकर आ गया हूँ। इस तीसरे घंटे की तरफ बढ़ते हैं और बातों ही बातों में बॉलीवुड का एक सवाल।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: वेल, मस्त बोलो गौरव यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में 5-3 से हरा कर टॉप 8 में अपनी जगह बना ली है, तो इंडियन फैंस इस वक्त आप खुश होंगे। वैसे कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने 2-2 गोल्स किए और एक बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले में आज कह सकते हैं नीदरलैंड्स में टीम इंडिया टॉप 8 में पहुंचने में कामयाब रही है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया से उम्मीदें काफी बड़ी लगाई जा रही हैं एंड उम्मीद है कि इंडियन टीम उस पर खरा उतरेगी। वहीं अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो आज उन्होंने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया और 165 रन से मुकाबला जीत लिया है। मीन से 10 विकेट से नहीं, 165 से, और 10 विकेट लिए हैं सुतार बॉलर ने। वेल, इन सबके बीच सवाल की बारी आई है, जरूर पूछेंगे। और सवाल यह है हॉकी से रिलेटेड कि वो किस खिलाड़ी के नाम पर बनी थी फिल्म जिसको देखकर हम सब ने एक गाना हमेशा गाया, चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया। 5000-1896 पर आपको बताना है कि वो कौन सा हॉकी खिलाड़ी था जिसकी जिंदगी पर वो फिल्म बनी जिससे निकला एक गाना जो इंडिया की हर बार जीत पर बजाया जाता है और चारों तरफ लोग उस गाने को सुनते हैं। 5000-1896 पर आपको बताना होगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आपको खिलाड़ी का नाम बताना है, रियल जिंदगी के खिलाड़ी जिसके किरदार को शाहरुख खान ने अपनाया और निभाया और बहुत सारा नाम कमाया। चलिए जी, जितनी जल्दी हो सके बता दो 5000-1896 पर उस खिलाड़ी का नाम जिसकी जिंदगी पर बनी थी फिल्म चक दे इंडिया। 89.6 मिर्ची वाली थॉट दिन को।

एक अलग ही फीलिंग है इस गाने में यार, अखिल सचदेवा की आवाज में ये गाना, क्यों दिखे तुम मुझे सिरहाने मेरे यार, मतलब ऐसे गानों को सुनकर ना आप भी सिंगर बन जाते हो। अखिल सचदेवा, मनशील गुजराल की आवाज में गाना सुना दिया, लेकिन अपने सवाल को दोबारा लेकर आया हूँ। इतना आसान सवाल है, सबने देखी है फिल्म, लेकिन बता नहीं पा रहे किस खिलाड़ी की लाइफ स्टोरी पर बनी थी। बात कर रहा हूँ फिल्म चक दे इंडिया की, हॉकी पर बनी इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है, एंड इसमें एक खिलाड़ी के ऊपर दाग लगता है, लेकिन वो फिर महिला टीम को वर्ल्ड कप जिता कर लाता है और हॉकी का ये सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। यही पूछा है कि जो फिल्म चक दे इंडिया हमने देखी, जिसमें शाहरुख खान ने कोच का किरदार निभाया था, वो रियल लाइफ में किसकी स्टोरी थी। मेरे जुबान पर यह नाम हमेशा रहता है, मैं आपको एक बार बता सकता हूं, लेकिन मैं हिंट नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इनका नाम थोड़ा लंबा है। 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, अगली बार नाम के साथ लौटूंगा और रीजन बताऊंगा कि मैंने इस अगस्त के महीने में आज ही यह सवाल क्यों पूछा है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्या, क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का। अभी आग लगा था इसमें, इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है यार से।
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन

अरिजीत सिंह शाह घोषाल की आवाज में रात भर गाना सुनाया किसने? आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों का जवाब ज्यादातर गलती है। हाँ जी, लोगों को पता ही नहीं है कि ये फिल्म चक दे इंडिया, हालांकि डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली बेस्ड थी उस खिलाड़ी पर जिसका नाम है मीर रंजन नेगी। मीर रंजन नेगी की कहानी से इंस्पायर होकर कबीर खान ने बनाई थी फिल्म चक दे इंडिया और उसी को डिपिक्ट किया था इस फिल्म में, जहां पर 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को गोल्ड जिताया था कबीर खान की फिल्म की तरह मीर रंजन नेगी ने, जैसा कि उस फिल्म में शाहरुख खान ने किया था। वेल, इन सब के बीच बस मोरोगर आपको भी बताना चाहेगा, अगस्त का महीना हॉकी के लिए बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि हॉकी के मैजिशियन इंडियन प्लेयर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी का 29th ऑफ अगस्त को बर्थडे होता है और हर साल इंडिया में स्पोर्ट्स डे उसी दिन मनाया भी जाता है। यस, और ये इंडिया के स्पोर्ट्स डे का दिन होता है। इतना ही कहना चाहूंगा कि वो खेल जिसमें एक जमाने में इंडिया की तूती बोलती थी, लेकिन जैसे ही ग्रास से टर्फ पर आया थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इंडिया फिर से हॉकी में धीरे धीरे अपना नाम कमा रहा है। आज की बात करें तो यस, आज इंडियन हॉकी टीम की मेंस टीम ने कमाल किया है, अपने मैच में हरा दिया है आज पाकिस्तान को और अब टॉप 8 की तरफ बढ़ चुकी है हॉकी वर्ल्ड कप में इंडियन टीम। ऑल द बेस्ट, उम्मीद है वो जो अभी तक बाकी रह गया है वो काम इस बार पूरा जरूर होगा और बहुत सालों के बाद हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया में जरूर आएगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऊ बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heart beat.

0: Radio Qatar, 6 decades of excellence in Qatar. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman heavy duty trucks and boom trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: आवाज में 90s का फील है, ऐसा गाना सुना दिया भाई। लेकिन फिलहाल मुसु नहीं, सुहानी की बात करेंगे जो आ रही है हमारे कथा। #974 यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कथा फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। एंड मेंटलिस्ट का काम ही है आपको जबरदस्ती सोचवाए, और जब आप सोचेंगे तो वो कैच कर लेंगे। यस, और आपको लगेगा यार ये तो माइंड रीडिंग का अलग खेल है, इसीलिए कह रहा हूं ये अपने आप में अलग दुनिया है। और 7 साल की छोटी उम्र से जब मेहनत की है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तब यहां तक पहुंची है सुहानी। एंड सुहानी को देखने के लिए 25th of September QNCC में आपको आना है, और उसके लिए आपको टिकट्स बुक करनी है। यस, टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि प्लैटिनम लिस्ट की बात कर लें, एस सिटी स्नूनू की बात कर लें, या फिर क्यू टिकट्स की बात कर लें, सब जगह आपको टिकट्स मिल जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको एस सिटी स्नूनू पर 30 कतरे रियाल का कैशबैक टाइप मिल रहा है, यानी कि टिकट्स तो खरीदेंगे ही, साथ में आपकी लॉटरी भी लग जाएगी जब आपको ये प्राइज मनी वापस मिल जाएगा, जो आपको और इजी बना देगा। मेंटलिस्ट सुहानी शाह, 30 रियाल का कैशबैक पर टिकट मिलने वाला है, जल्दी जाओ, अभी ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाओ। और मस्त बोलो गौरव को थैंक यू कहो कि जो ऐसी ऐसी बातों में आपके लिए अच्छे अच्छे सौदे की चीजें लेकर आता है। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह, 25th September, गो ग्रैब योर टिकट्स राइट नाउ। एंड फिलहाल अब जब इतनी अच्छी बात बताई है, 30 कतरे रियाल कैशबैक दिला रहे हैं सिटी पे, तो सौदा खरा खरा हुआ ना।
1: मिर्ची शॉट स्टार्ट हो गया।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: पतंग उड़ाने के लिए तो कोई ही नहीं डायरेक्शन देना पड़ता, लेकिन ड्रोन उड़ाने का आ गया है। मिर्ची घड़ी में शाम के 7:04 से 5 मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं हम।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बार बार बता रहा था कि अरबिक में कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बकायदा एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो आज पब्लिकली किया था। एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोले तो कैसे ड्रोन को यहां पर उड़ाना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पर अवेयरनेस की गई है एंड ये जल्द ही हम तक भी पहुंच जाएगी। वेल, हम आपको बता दें आज एक सेशन था जो कि हाईलाइट करा रहा था कि कैसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को हमारे कतर के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग उड़ाना है एंड उसके लिए क्या क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी ने बनाई है, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लिखा है। ये सब कुछ चाहे वो कमर्शियल हो, रिसर्च के तौर पर हो या फिर रिक्रिएशनल एप्लीकेशंस हो, सबके लिए क्या है ये आपको पता लगने वाला है। हालांकि ये आज का सेशन पूरा अरेबिक सेशन था, बट आई एम श्योर आने वाले टाइम में इससे जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लगेंगी एंड ट्रस्ट मी, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पिछले दिनों जिस तरह के हालात थे उसी टाइम पर ड्रोन को किसी भी तरह ऑपरेट करने पर बैन लगा था, उसके बाद हमें कुछ हद तक बताया गया एंड अब इसकी क्लियर कट गाइडलाइंस है कैसे हमें अपने कतर के एयर स्पेस में किस लेवल तक कैसे इसको फ्लाई कराना है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोले तो ड्रोन को। ये आने वाले टाइम में आपको जल्दी दिखाई भी पड़ जाएगा एंड मैं कहता हूँ ऐसे कानून इसलिए भी जरूरी होते हैं कि लोग कुछ भी ना करें अपने मन से, पतंग उड़ा ले वो ठीक है लेकिन ड्रोन वो ना उड़ा भैया। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहा
3: है. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था कैसी हो. वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी.
3: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आपको कैसा लगता है जब आपकी पार्किंग में कोई और गाड़ी लगा देता है या आपकी पार्क गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा देता है? आई एम श्योर आप जबरदस्त इरिटेट हो जाते होंगे। अगर कंपाउंड में है तो आप ग्रुप पे लिखने लगते हैं, गाइस जल्दी ये गाड़ी हटाओ, प्लीज रिमूव योर कार, एटलीस्ट हैव दिस मच सेंस, और ना जाने क्या क्या। अब ऐसे ही सेंस हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन का रामा।
1: #974 the most trending local news of the day.
0: क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे uninterrupted electricity and water supply, तो जरूरी है कि हम इस continuous service के लिए कहरामा के जो भी points हैं, यानी कि उनकी facilities, उनके service connections, जो भी हमारे area में कहरामा से related हैं, हम उनको बिल्कुल खाली रखें। यस, करामा की तरफ से हम सबसे ये रिक्वेस्ट अर्ज की गई है कि उनके जो पॉइंट्स हैं, जो करामा के स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स हो या फिर वाटर सप्लाई की फिटिंग्स हो, वहां के आसपास उनको बिल्कुल क्लियर एक्सेस चाहिए। उनका मानना है कि उनके इंस्पेक्शन, उनके मेंटेनेंस, उनके टेक्निकल एडजस्टमेंट्स किसी भी टाइम आ सकते हैं, और ऐसे में कई बार होता है लोग कहरामा के उस छोटे से हाउस के आसपास अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और ये उनके काम को कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। अगली बार जब आप हड़बड़ी में हो और सामने कहरामा का वो जोन दिखाई दे रहा हो तो प्लीज अपनी गाड़ी वहां नहीं लगाइएगा। आप तो ये लगाकर सोचेंगे कि अरे 10 मिनट की बात है, लेकिन उस 10 मिनट में अगर ऊपर वाला ना करे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो आप तो बस तो दोषी बनेंगे ही बनेंगे। इसकी वजह से किसी के लिए जान का खतरा भी हो सकता है, इस बात को भी समझिएगा। आई एम श्योर आप इतनी बात को ध्यान देंगे। एंड कहरामा के इन ऑफिशियल एडवाइजरीज के बाद उनकी पब्लिक फैसिलिटीज के आसपास आप स्पेस को एकदम क्लियर रखेंगे। एंड आई एम श्योर हम समझदार हैं, हमें इशारा दे दिया गया है, हम बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: स्टूडियो कतर, 6 decades of excellence in कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: आइए आपका इंतजार था।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ऐसे ही इंतजार करते करते सबका स्वागत करने को तैयार हो गया है। बता दें, अराइवल गाइडलाइंस आ गई हैं क्योंकि बिजिएस्ट अराइवल पीरियड आ चुका है। अगस्त के एंड में सब लौटने वाले हैं और इसके लिए बकायदा दिस अगस्त दोहा इज वेलकमिंग थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी छुट्टियां पूरी कर वापस लौट रहे हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग विद द लिटिल वंस के लिए एक बकायदा एयरपोर्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री चाइल्ड स्ट्रोलर जो है वो ऑफर किया है, यानी कि वो फैमिलीज जो वापस लौटेंगी और एयरपोर्ट पर उनके साथ बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रोलर नेस्ट पे आपको स्ट्रोलर्स मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। एंड बड़ी बात यह, इसके अलावा शटल बग्गी सर्विसेज भी आपको अलग अलग स्टेशन से मिल जाएंगे, कॉन्कोर्स डी एंड ई से अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो आपको उस पूरे रास्ते पर मिलने वाला है। एंड सीट होगी तो ही जगह मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि बग्गी जा रही है चार लोग उस पर लदे और पांचवें आप बन के सूटकेस लादे जा रहे हैं, मतलब जगह देख के बैठना। इसके अलावा हम आपको बता दें, स्कैन एंड गो विद ई गेट्स विल बी अ स्मूदर इमिग्रेशन, तो आप उसी की तरफ जाइएगा और बैगेज रिक्लेम एरिया में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सबसे बिजिएस्ट टाइम है एयरपोर्ट के लिए, स्पेशली अराइवल्स पर, जहां पर बहुत सारे लोग छुट्टियां मना के अपनी मस्ती से लौट रहे हैं। चाहे बच्चों की बात कर लें, उनको स्कूल जाने का एकदम मस्त मजा है, वहीं अगर फैमिलीज की बात करें तो लेडीज एंड जेंट्स जो लौट रहे हैं वो अपने दोस्तों यारों के साथ वीकेंड पे पार्टी मनाएंगे एंड क्या क्या किया ये बताएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको आना तो है, एंड हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि आपको एकदम सुगम तरीके से अराइवल मिलेगा, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट स्मूथ अराइवल्स ऑन एनी एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए तालियां हो जाए भाई। ऑल द बेस्ट, मिर्ची इट्स हॉट।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

अब डोज लव का हो या एंटरटेनमेंट का, आपको मिर्ची सारे डोज देता है। और बारी अब एंटरटेनमेंट के डोज की है, जो हम सितंबर में आपको देने जा रहे हैं विद द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड दिस विल बी अ मैजिकल इवनिंग। आई एम टेलिंग यू, मेंटलिस्ट क्या होते हैं? मेंटलिस्ट वो मजिशियन है जो इल्यूजन क्रिएट कर ऐसा सपना मैजिक आपके दिमाग को पढ़ने का दिखाएंगे, जिसको देखकर आप कहेंगे ये कैसे कर पाती हो। इसीलिए तो सुहानी पूरी दुनिया में जानी जाती है। एंड अब हमारे कतर आ रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस एक्सपीरियंस को उनके सामने रूबरू होकर ले एंड सीखे एंड समझे, इस उम्मीद में कि आपके दिमाग को भी वो पढ़ेंगी एंड कुछ तो मजेदार करेंगी। आप अपनी टिकट्स बुक करा लो। एससीटी स्नूनू पर इस वक्त आपको मिल रहा है 30 कतारी रियाल का कैशबैक विद एवरी टिकट परचेस। एंड उससे भी बड़ी बात यह है, हमारी टिकट आपको अब सारे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, अर्ली बर्ड ऑफर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एंड वंस यू विल बुक द टिकट्स, यू विल कम टू नो कि कितनी जबरदस्त शाम है। एंड जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे, धड़कनें और बढ़ेंगी और भी सारी चीजें ऐड होंगी, वो सभी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। ऑलमोस्ट 1 month 5 days आर लेफ्ट। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव सिंह टाटा बाय। लौटेगा कल शाम एक बार फिर से बहुत सारे मस्ती धमाल के साथ। तब तक के लिए हबीबी मा सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरे ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: लगता है जो काम ऑर्गेनिकली हो जाता है ना, वो चाहे कितना भी आप पैसे देके करवाओ या फोर्सफुली करवाओ, नहीं हो पाएगा।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अभी अभी आपने गाना सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में तुम मिले दिल खिले। यार कैसे, मतलब यार मैं सोचती हूँ इन दोनों ने एक साथ कितने गाने गाए होंगे ना, हजारों तो गाए होंगे, बट अगर वो वाइब नहीं मिल रही होती ना दोनों की एक दूसरे के साथ, तो फिर शायद ये नहीं हो पाता पॉसिबल, ऑर्गेनिक वाइब। ऐसे ही बहुत सारे काम आई ऑफ लेट बीन ऑब्जर्विंग कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ रील्स के लिए या सिर्फ स्टोरीज के लिए या सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, ऑर्गेनिकली नहीं करते हैं, तो फिर वो ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो बस हो गया ठीक है। पर मैं एक बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ, चाहे कितनी भी जनरेशंस बदलती चली जाएं, लेकिन वो जो ऐसे दिल वाली चीजें होती है ना, रूह वाली, मोहब्बत वाली, जिसमें एक्चुअली मुंह से निकलता है कि और जीने को क्या चाहिए, वो वही होती है जो ऑर्गेनिकली होती है, प्रेजेंट होके की जाती है, सच में दिल से की जाती है। आई डोंट वांट टू गिव यू ज्ञान एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ ये यार थोड़ा सा ना मिसिंग लगता है कहीं कहीं पे मुझे, कि सिर्फ टिक मार्क करने के लिए मत करो काम यार, दिल से करो या मत करो। हाँ वो अलग बात है कि बॉस के आगे तो बटर चाशनी सब लगा के काम करना ही पड़ता है। सुनो ये अगला गाना अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, बहुत प्यारा गाना, येट अगेन ऑन मिर्ची कैफे, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
2: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
1: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
2: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर।
1: मजे आ रहे
2: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तो मजा आ रहा है, तू मजे ले रहा
3: फोन करके। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक दिन जिस इंसान से मिले हो फॉर बेली 2-3 आवर्स, आप ये डिसाइड करो कि आपको सारी जिंदगी उसके साथ बितानी है?
1: मिर्ची कैफे।
0: तो बेसिकली मैं आपको अपने एग्जांपल से बताती हूँ। एक होती है अरेंज्ड मैरिज, ओके, जैसे कि मेरे साथ हुआ रहा। एक दिन हम मिले और अगले दिन हमारा रोका हो गया, ओके, टोटल ट्रेडिशनल वाइब्स। और दूसरी होती है लव मैरिज, और उसके बाद यू गेट इनटू दैट मोड कि अननोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन वन, और फिर उसके बाद आप लव मैरिज करते हो। तो जो आपने अभी पहला वाला गाना सुना ना, इट वॉज जस्ट लाइक एन अरेंज मैरिज। और ये जो अगला गाना मैं आपके लिए अभी चलाने जा रही हूँ, फ्रॉम द फिल्म RHDDM, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु आर इन लव, बी इट एन अरेंज मैरिज और लव मैरिज। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब आप कुछ साल एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ बिता लेते हो ना, वेदर इट इज एन अरेंज और लव मैरिज, तो आप फिर ना सेम लेवल पे आ जाते हो, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको कितने साल से जानते हैं और कौन सी वाली शादी हुई है आपकी। मैच तो होना ही है भाई। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट RHDDM, यार देखा जाए तो कितना टॉक्सिक नहीं था वो बंदा, मैडी का कैरेक्टर, जिसने झूठ बोल के दिया मिर्जा को फंसाया। बट फिर टॉक्सिसिटी है भी तो एडिक्टिव ना, कैसे नहीं पसंद आएगी लड़कियों को। लिसन टू दिस सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची कैफे, मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वो सोनी सी महिमा चौधरी और शाहरुख खान का मैजिक और कुमार सानू की आवाज, व्हाट अ सॉन्ग ना दिस इज. आपको पता है ये फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में शूट हुआ था.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और मैं आपको हमेशा ही बताती रहूंगी आके कि कौन कौन से ऐसे गाने होते हैं जो कि किसी ना किसी राग पे बेस्ड होते हैं. सो दिस सॉन्ग जो अभी आपने सुना, दो दिन मिल रहे हैं, ये है राग खमाज पे बेस्ड. ऑल्सो शाहरुख का ही एक और गाना है कभी अलविदा ना कहना से, मितवा. मितवा गाना है उसकी, जो एक बहुत ही पॉपुलर सरगम हुई है जो कि रील्स पे भी काफी वायरल हुई थी. उसका वो पोर्शन भी, और जो आपको एक मैं नेक्स्ट गाना सुनाने वाली हूँ कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में, ये गाना भी, ये भी राग खमाज पे बेस्ड है. और इस राग की ना सबसे प्यारी बात ये है कि ये बहुत ही सोलफुल राग होती है, राग खमाज. तो जो भी गाने ऐसे मोस्टली रोमांटिक गाने बनते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ राग खमाज का वर्जन काफी गानों में लिया गया है. ये गाना सुनो आप फ्रॉम द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी. मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live

0: ऐसे लोग देखे हैं जो अपने फोन को चार्जिंग से हटाते वक्त पहले स्विच ऑफ करते हैं, फिर तमीज से अपने चार्जर से अपना फोन हटाते हैं। रेयर पीपल आई टेल यू।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मैंने देखा मेरे ऑफिस में एक बंदी है भाई, वो ऐसे प्रॉपरली स्विच ऑफ करके अपना फोन निकाल रही थी। आई वाज डैम इम्प्रेस्ड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी ये आदत खत्म हो चुकी थी। बट यस, टुडे आई लर्नड इट फ्रॉम हर, अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। होता है ना, रोज चलते फिरते हम क्रिटिसाइज तो बड़ा आसानी से लोगों को कर लेते हैं, बट अगर कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने का मौका आए तो इग्नोर कर देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। नहीं, जापानीज इस मामले में बहुत आगे हैं हमसे। देखी होंगी आपने भी रील्स जहाँ पे बताया जाता है कि जापानीज बड़े अच्छे से तारीफ करते हैं लोगों की, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं और वैल्यू करते हैं लोगों को। हम शायद वो चीजें भूल गए करना। तो बॉस, आज के मिर्ची कैफे की विदाई का वक्त हो गया है और मैं आपसे बस ये कह के जाना चाहती हूँ कि जितने भी प्यारे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका रास्ता मत छोड़ो कभी भी, और अच्छे म्यूजिक का रास्ता तो कतई नहीं छोड़ना कभी भी। अगर आपको कोई गाना सुनने का मन है इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मिर्ची कैफे, आप मुझे ढूंढिए इंस्टाग्राम पे paruls.world और प्लीज डीएम करके मुझे बताइए आपका नाम और ये भी बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो इन द नेक्स्ट एपिसोड, और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वो गाना। तब तक खुश रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो और सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी।

जीन्स पे हेलो हेलो श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जा करके अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था
3: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है? नहीं,
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
7: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफ़ी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी, वेल इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजयंती माला जी को सुनाया तो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजयंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजयंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजयंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आलिया आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे देंगे कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जब वो पहली बार सेट पे आई बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
3: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल, दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म विच वॉज इन कलर अंडर नवकेतन प्रोडक्शंस गाइड इसको बना रहे थे, एंड साइमल्टेनियसली राज कपूर साहब आरके फिल्म बैनर के अंडर संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग, मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिसपे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो
1: कौन
2: हेलो विपिन
1: कौन बोल रहा है
2: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था
1: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था
2: आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो कब अप्लाई किया था आपने
1: भाई इतने धीरे के बोल रहा है
2: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं 15 रिजेक्ट कर चुके समझ गए इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो आप क्या फायदा है आप बताओ कब किया था
1: अभी पहले किया था
2: अच्छा अच्छा आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी आप खुद आए थे
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी
2: भैया इस तो बोल अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे कौन है मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके
1: जाना जरूरी है
2: कहाँ जा रहे हो
1: दुबई
2: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई जल्दी जाना है तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए हो सकता है कल ही मिल जाए
1: हाँ ठीक है ठीक है
2: मैंने सही किया ना बता दिया वरना ये तो बौखला जाता ना ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता
1: आपने एकदम सही कह रहा
2: है हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए भाई साहब एक बात बताऊं आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है मैं ऐसी बात करता था कैसी हो वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं
1: मैं तो पागल है क्या
2: चिल्लाओ मत ठीक है मैं रखता हूँ
1: करवा देना भी है आपसे
2: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे
1: सॉरी सॉरी सॉरी
2: ठीक है चलो पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट
1: ओके ओके
2: आई लव यू
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी एक शाम एक स्टेज और दो कमाल टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हूं श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म्स की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वांटेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वांटेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल. सेट योर ड्रीम्स सेट योर गोल्स कॉन्फिडेंस का टूल. अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल. सो ज्वाइन करो.

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर के फिल्म। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम. सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे. शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे. राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी. सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई. अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही. उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो. और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने ख़त पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया. वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफ़ी साहब. ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफ़ी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आफो श्रेया के साथ मूवी का नाम है संगम, जो आरके फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
4: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ आप आगे ले लेंगे इसको?
4: कितने का डॉक्यूमेंट है मेरा?
3: 7500 रुपए का।
4: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप?
3: नहीं नहीं सर ये 25000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
4: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
4: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50000 रुपए कट गए आपके।
4: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7500 रुपए आपके बचते हैं।
4: ये भी तुम्हें रख लो, ये भी हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
4: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
4: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है? हाँ संदीप जी आप मुझे बताइए, आप मुझे
4: बताइए
3: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए संदीप।
4: बोलो बोलो
5: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 89.6 मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना, दे वर टंडन फैमिलीज एंड दे वर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की द शोमैन की इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इसी फिल्म की नॉन स्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब भाई वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नंदीश संधू टीवी एक्टर, बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
4: आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
4: जुनून के।
3: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्राई।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रुपी ट्राई।